श्रोताओं सुप्रभात। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: जंतुक उद्गम सा बहुत पूर्वे वनस्पतिक उत्पत्ति पृथ्वी पर भेल छल। तैं वनस्पति के जीवधारिक समूह में अग्रजक स्थान प्राप्त छैक। पहिने सूक्ष्म एवं सरल रचनायुक्त वनस्पतिक उत्पत्ति भेल, पुनः क्रमशः विशाल एवं जटिल रचनायुक्त गाछ वृक्षादिक आविर्भाव होमय लागल। जंगम व चर जंतुक आगमन बहुत बाद में भेल। जैव विकासक क्रम में प्रथमतः शाकाहारी प्राणी आयल, जे जीवन यापनक हेतु गाछ वृक्ष लता गुल्मादि पर आश्रित छल। मांसाहारी जीव बाद में आयल। एहि जीवक जे जीवनाधार से शाकाहारी जीव मांसाहारिक वनस्पति पर निर्भरता निर्विवाद अछि। जँ वनस्पति नहि तँ शाकाहारी जीव नहि, आ जँ शाकाहारी प्राणी नहि तँ मांसाहारी जीवक सेहो कोनो अस्तित्व नहि। जँ वनस्पति के सृष्टिक धारक पालक आ रक्षक कहल जाए तो कोनो अतिशयोक्ति नहीं हैत। लोक कल्याणकारिणी भगवती के शाकंभरी कहि भारतीय चिंतन वनस्पतिक प्रति अपन विनम्रता अपन कृतज्ञता प्रकट केलक अछि। जखन भगवान कहै छथि अश्वत्थो हम वृक्षाणाम, तखन स्पष्टतः वनस्पतिक महत्ता ओकर श्रेष्ठता प्रतिपादित होइ छै। वनस्पतिक महत्व सँ आदि मानव परिचित छल। वृक्ष पूजाक उत्स ताकब सरल नहीं अछि। मानवक पूर्वजक आश्रय वृक्षे छल। जखन ओ पैर पर चलय लागल तखनो वृक्षे ओकरा आश्रय देलकैक। वृक्षक कंदमूलक आहार, ओकर शाखातर विश्राम, ओकर छाल पातक परिधान, वृक्षे तो मानव जीवनक मानवक जीवन यापनक लेल साधन स्वरूप छल। कल्पतरुक अवधारणाक पाछा यह हेतु अछि। कल्पतरु जे इच्छित वस्तु प्रदान करे, वृक्ष मात्रे कल्पतरु थिक। कने विचार को देखल जाए तो स्पष्टतः वृक्ष मानवक सब मूल आवश्यकताक पूर्ति करो में समर्थ अछि। दक्षिण भारत में नारिकेली गाछ के कल्पतरु कहल गेल अछि। नारिकेल सँ नाना भोज्य पदार्थ बनै छै। जटा सँ रस्सी आ दोसर दोसर उपयोगक सामान तैयार होइ छै। घरहट करक लेल प्रयोजनीय सब सामग्री नारिकेली गाछ प्रदान करै छै। जाहि परिवार के 150 नारिकेली गाछ छै ओ परिवार भोजन वस्त्र आवासक मूल आवश्यकताक पूर्ति करय में समर्थ अछि। ततबा नहि, वृक्ष वायुमंडलीय शुद्धता के लेल अनिवार्य अछि। औद्योगिकरणक संगहि वायुमंडलीय शुद्धताक समस्या विराट रूप धारण कर रहल अछि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि विषाक्त गैसक आधिक्य भेल जाइ छै। एहि विष सँ मानव के बचावक लेल वृक्ष कवचक काज करै छै। एक अध्ययनक अनुसार एक गोट सामान्य वृक्ष अपन जीवन काल में 2,00,000 टाका मूल्यक लाभ मनुष्य के पहुंचबै छै। प्राण वायु

0: प्रदान करे, वायुमंडल के स्वच्छ राखे, बरखा आने, भूमि क्षरण के रोके, फल प्रदान करे, मूल्यवान बहुपयोगी काठ दे। मानव जाति द्वारा जाहि गतियां वन संपदा के दोहन भ रहल अछि, ओ चिंता के विषय थिक। गाछ काटल जाय अधिक, रोपल जाय कम। वन रोपणक दिशा में सामाजिक अभिरुचि अपेक्षित छैक। सामाजिक वन रोपण आय सामाजिक उत्तरदायित्वक अंग बन गेल अछि। सार्वजनिक स्थान आ प्रति परात में गाछ वृक्ष रोप एहि उत्तरदायित्वक वहन कयल जा सकै छै।
1: चिंतन, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: कृषि चर्चा में सब किसान भाई के मोनिक स्नेह पूर्वक नमस्कार। किसान भाई, नीक खेती के लेल उत्तम माइट, नीक खाद पानिक संगे नीक उत्तम प्रभेद के बीया के खेती में व्यवहार से नीक उत्पादन के प्राप्ति होइत अछि। एकरा बाद बीया के बीजोपचार अति आवश्यक होइत अछि। बीजोपचार एकटा एहन प्रक्रिया अछि जाहि में बीया के कार्य क्षमता बढ़ेबा के लेल ओहि पर पोषक तत्वक या जैविक या भौतिक प्रक्रिया के प्रयोग कयल जाइत अछि। एकर उद्देश्य बीया के शक्ति बढ़ेनाइ, विकास सुनिश्चित करनाइ आ रोगजनक आ कीट से बचेनाइ अछि। बीजोपचार के अनेको लाभ अछि। ई नहि सिर्फ बीया के लेल बल्कि संपूर्ण फसल चक्र, किसान आ पर्यावरणक लेल सेहो अछि। किसान भाई, बीजोपचार के कतेको तरीका अछि। जेना बीया में लेप लगेनाइ एकटा एहन प्रक्रिया अछि जाहि में बीया के उर्वरक या वृद्धि संवर्धक एहन पदार्थक पातर परत से झाँपि देल जाइत अछि। एहि लेप के कतेको उद्देश्य होइत अछि। एहि से बीया के दृश्यता बढ़ जाइत अछि, जाहि से किसान भाई के बाउगक तरीका के देखनाइ आसान भ जाइत अछि। किसान भाई, बीया पर फफूंदनाशक, कीटनाशक आ आन सुरक्षात्मक पदार्थ लगेनाइ बीजोपचार के प्रक्रिया अछि। बीजोपचार से बीयाक विकासक प्रारंभिक चरण कीट आ रोग से सुरक्षा भेटैत अछि। किसान भाई, बीज प्रसंस्करण में बीया के एक मोट एक समान परत में लपेट कर मानक आकार या आकृति के गोली बनाओल जाइत अछि। प्रसंस्करण से फसीलक उपजा नीक भ जाइत अछि।
1: कृषि चर्चा, अभी सुना आपने ये कार्यक्रम। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने

0: गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वे नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी सिन्हा, जो यहाँ की एक जानी मानी डाइटिशियन हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। हमारी बातचीत का विषय होगा शिशु आहार। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका उस समय आहार क्या होना चाहिए?
3: सबसे पहले तो जब बच्चा जन्म लेता है उसका आहार, तो जैसे सबको पता है कि माँ का दूध ही सबसे सर्वोच्च होता है उसके लिए। जब बच्चा जन्म लेता है उसके आधे घंटे बाद ही हम बोलते हैं कि माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने तक माँ के दूध पे बच्चे रहे तो सबसे बेस्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ को दूध नहीं आ पाता या दूध कम आता है, तो उस समय पे फिर हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप बच्चे को गाय का दूध आप दे सकते हैं।
2: माँ का दूध सबसे अच्छा आहार होता है, लेकिन यदि किसी माँ के स्तन में दूध यदि नहीं है तो उस परिस्थिति में कोई पाउडर मिल्क वगैरह कोई ले सकता है?
3: हाँ, पाउडर मिल्क वगैरह ले सकता है। अच्छा। लेकिन आप एक बार अगर अपने मन से कुछ ना करें, डॉक्टर से एक बार पूछ के ही करें। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप अगर पाउडर मिल्क भी नहीं तो फिर गाय का जो दूध है वो सबसे बेस्ट है।
2: अच्छा, तो गाय का दूध सीधा रहना चाहिए, उसमें कुछ पानी मिला
3: नहीं, उसमें हम कुछ पानी मिला के देंगे, बिना मलाई वाला देंगे। अच्छा। और उसको एक बार छान के भी देंगे, ऐसा नहीं है कि बस दूध गर्म किया और दे दिया, उसको हम लोग छाने तो सबसे बेस्ट है।
2: सीधे देने से वो गरिष्ठ हो सकता है ना?
3: हाँ, गरिष्ठ हो सकता है, पचाने में बच्चे को परेशानी होगी इसलिए।
2: अच्छा, पानी के बारे में भी डॉक्टर साहब बहुत कंफ्यूजन होता है कि छोटे बच्चों को पहले कुछ दिनों तक पानी अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका?
3: नहीं, पानी अवॉइड करने को ही बोलते हैं हम लोग। छोटे बच्चों को हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि आप उनको पानी दें। पानी अगर आपको बच्चे को देना भी है तो आफ्टर 5 मंथ्स आप स्टार्ट करें। जब बच्चा

0: पांच महीने का हो जाए उसके बाद आप पानी दें तो बेस्ट है।
1: पांच महीने तक बिल्कुल ना पानी
0: नहीं, आप मिल्क पे ही रखें बच्चे को। अच्छा। मिल्क पे ही रखें या मदर मिल्क पे है तो सबसे अच्छा, अगर नहीं भी है तो पानी नहीं नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमको देना पड़ता है तब उस टाइम पे हम बच्चे को जो है पानी दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी उसमें ऐड ना करें। जो बहुत लोग कुछ कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, मिश्री विश्री ये वो, उन चीजों को हम ऐड ना करें तो अच्छा है।
1: जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है, बच्चा परेशान है, तो उस केस में पानी देने में कोई हर्ज नहीं है?
0: उस चीज में हर्ज नहीं है, लेकिन हम बहुत मतलब कम क्वांटिटी में हम पानी दें, ज्यादा उस तरीके से नहीं कि हम बस पानी पिलाए जा रहे हैं।
1: ऐसा सादा पानी तो नहीं, नल
0: का
1: पानी
0: नहीं, नल का पानी नहीं, वो हाँ फिल्टर्ड वाटर हो, बॉइल्ड वाटर हो तो वो अच्छा है।
1: ठीक है, तो छह महीने तक तो आपने कहा कि माँ का दूध जो है सर्वोत्तम आहार है, उसके बाद आहार में क्या परिवर्तन आ सकता है?
0: उसके बाद जो हम बोलते हैं कि जब बच्चा छह महीने का हो जाता है तो हम एक फूड स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड, उसको बोला जाता है कि जो कि फूड बहुत जरूरी है, क्योंकि बस माँ के दूध से बच्चे का जो एक डेवलपमेंट है वो छह महीने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जो है फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको बच्चे को अनाज जो है, जो घर का जो खाना है, सिंपल सी बात है, उसको हमको स्टार्ट करना है। लेकिन बस ये देखना है कि हमको उसको कैसे शुरू करना है। बच्चा छह महीने का है, हम उसको लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि दाल का पानी है, राइस वाटर है, सूप आप दे सकते हैं सारी सब्जियों को छान के। पालक का सूप बच्चे को दे तो बेटर है, क्योंकि आयरन की नीड बहुत ज्यादा होती है, विटामिन सी की नीड बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे। तो आप सब सब्जियों को सूप बना के छान के पतला करके छह महीने में आप ऐसे बच्चे को दे सकते हैं। फ्रूट जूस भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट हम बहुत कम करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे 1/2 to 1 teaspoon।
1: अच्छा,
0: इस मतलब तरीके से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि बच्चा ले रहा है तो हम इसको दिए जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। स्टार्ट विद मतलब स्मॉल फीडिंग मींस 1/2 teaspoon to 1 teaspoon।
1: यानी कि जो हम लोग जो चावल खाते हैं, जो काफी बड़े बड़े दाने होते हैं, या दाल गाढ़ी दाल खाते हैं, उस तरह का उसको
0: नहीं,
1: भोजन
0: बिल्कुल नहीं। स्टार्ट विद क्लियर लिक्विड डाइट, उसके बाद हम फुल लिक्विड डाइट पे आएंगे। जब सातवें महीने में बच्चा आएगा तो हम बच्चे को दूध वाली जो आइटम है, जैसे खीर का आइटम है, सूजी का पॉरिज हो गया बिल्कुल पतला बना के, कस्टर्ड हो गया बिल्कुल पतला बना के, ये खिचड़ी बिल्कुल पतली सी खिचड़ी, या दाल आप उस टाइम दाल का सूप थोड़ा सा, इस तरीके से हम बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं।
1: तो कितने दिनों के बाद हम उसको जो है पूर्ण आहार दे सकते हैं?
0: पूर्ण आहार जो सॉलिड फूड देंगे वो हम बच्चे को 1 साल के बाद देंगे, 12 महीने। नहीं तो जो 8 से 9 महीने का जो है वो भी पूरा सेमी सॉलिड डाइट पे रहेगा। बच्चे का खिचड़ी हो गया, मैस पोटैटो हो गया, सब्जियां मिक्स करके दें आप। 10-11 महीने का है तो दलिया है, ओट्स है, आप ये चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं। रोटी जो है पूरा उबाल के, बॉइल करके, पीस के वैसे दे सकते हैं।
1: अच्छा, 1 साल हो जाने के बाद आपने कहा कि उसको जो है भोजन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 1 साल तक के शिशु को नहीं दिया जाना चाहिए?
0: सबसे पहला चीज तो ये है कि जो हैवी स्पाइसी फूड दी है, ज्यादा फ्राइड आइटम नहीं बच्चे को देना है, ज्यादा स्पाइसी आइटम बच्चे को नहीं देना है, ज्यादा फ्लेवर आइटम नहीं देना है, जैसे बिस्किट वगैरह अपना दें तो बेस्ट है। जो हमने बताया कि एक नॉर्मल घर का अनाज, सब्जी, फल और दूध पे बच्चे को रखना है हमको 1 साल तक।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को शिशु आहार के बारे में अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया, और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस देश वंदना के साथ।

इस देश वंदना के बाद अब प्रस्तुत है ये गणेश वंदना, विपिन सचदेवा के स्वर में। गीत और संगीत राजेश नाइक के हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। प्रस्तुत है जयंती देवी और सहेलियों के स्वर में ये बराती।

अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर के स्वर में ये भजन, और अब सुनिए विशाल मिश्रा को। शब्द रचना मनोज मुंतशिर के और संगीत निर्देशन पायल देव ने किया है।

0: जुबिन नौटियाल के गाए इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न हुआ। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान,
1: एपिसोड नंबर 373।

भगवान शिव ने जगत जननी पार्वती को इस प्रकार वो कथा सुनाई जो काक भुशुंडी ने गरुड़ का मोह भंग करने के लिए सुनाई थी। प्रभु के चरित्र की संख्या अपरिमित है, अपार, जिनका वर्णन स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती। भवानी कृतकृत्य हुई, उनके मन का संशय मिट गया, श्री राम के प्रताप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया।

रामचरितमानस गान अभी आपने सुना। मुख्य स्वर हरिहरन और अनुराधा पौडवाल के थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। 8:00 होंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर खबरनामा। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 8:48 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे 9:10 पर। और प्रातः 10:00 आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। 10:30 पर आप सुन सकेंगे विद्यापति गीत। शास्त्रीय संगीत आप सुनते हैं 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुनेंगे 11:30 पर। और दोपहर 12:00 आनंद ले सकेंगे आप फिल्म संगीत के अंतर्गत कुछ नए फिल्मी गीतों का। श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार होता है 12:30 पर।

5 बजे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी के साथ की जाती है, जिसमें आज आप सुनेंगे कार्यक्रम तरुण कुसुम। शाम 5:40 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। विद्यापति गीत आप सुनते हैं शाम 6:10 पर। पर आप सुनते हैं मैथिली संवाद और शाम 6:30 पर गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुभव के चश्मा सौ। शाम 7 बजे होता है किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। जिले की हलचल के साथ प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। और मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होता है रात्रि 8:15 पर। पर आप सुनेंगे समाचार संध्या 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू खबरें। रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे आज पब्लिक स्पीक और रात्रि 10 बजे कार्यक्रम होगा हेलो आकाशवाणी। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत और फिर हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ह्यः तेलङ्गाणाराज्ये प्रायः चतुश्शतोत्तरनवसहस्रकोटिरूप्यकाणाम् आधारभूतसंरचनानाम् औद्योगिकपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्षजनितं ऊर्जा संकटं प्रभावीरीत्या नियन्त्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति।

0: पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्यसचिवालये मन्त्रिमण्डलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य सम्भावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतनमन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मानभारतम्, अन्नपूर्णाभण्डारः, राज्यसर्वकारीयकर्मचारिणां कृते सप्तमवेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डलदण्डाधिकारिभिः, पुलिस् इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्नविभागानां सचिवैः सह प्रशासनिकविधिव्यवस्थाविषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमन्त्रीपदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतनसर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपानेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायकदलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्रीहिमन्त शर्मा घटबन्धननेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिकरूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतनमन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहणसमारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सामहाविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, भाजपाध्यक्षः नितिननवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट

0: मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोता लोकन के आशीषक नमस्कार।
0: मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति। स्वीकार करें मेरे से भी स्नेह भरा नमस्कार। आशीष जी आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार प्रतिभा जी, आ जना हम सब सब दिन भोरे भोर सुविचार ले छी, तो आजुक सुविचार की है?
0: नीति श्लोक है, कहते हैं गुणाह कुर्वन्ती दूतत्वंग दूरे अपि वस्तांग सताम केतकी गंध माघ्राय स्वयं आयंती खटपदा। अर्थात गुणी लोग दूर रहकर भी अपना प्रभाव फैलाते हैं, जैसे केतकी के फूल की गंध पाकर भंवरे खुद आ जाते हैं, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो गुणी होते हैं, जो सद्भावना पूर्ण व्यक्ति होते हैं, तो उनकी जो यश है वो दूर दूर तक फैलाना पड़ता नहीं है, बल्कि अपने आप फैलता है। जो उनकी जो स्वभाव है, उनमें जो गुण है, व्यक्तित्व जो उनकी है, वो किसी और को कहना नहीं पड़ता, खुद ही लोग जान जाते हैं।
1: निश्चित तौर पर, और कहल जाते हैं कि जिनकर जेहन स्वभाव हुई है हुनकर ओहने जे सर्किल बनऽ लगे छन, और गुणी लोग सन रहे से अहू गुणी हुआ लगे छे। तै दुआरे कहल जाते हैं कि अहाँ नीक लोग सन रहब तो अहू के अंदर अहाँ आगू के बढ़े के संभावना बढ़ जात। और गुणी लोग इएह से पहचानल जाए छथि, जना कि अखन हम सब बुझैत रही कि हुनका लग रहे से अगर अहू के भीतर अगर बदलाव आबि रहल अछि, अहाँ नीक भेल जा रहल छी, एकर मतलब अहाँ हुनकर संगति में छी और इएह संगति हुनकर

0: पहचान हुई थी।
1: बिल्कुल, और कहते हैं कि सत्संगे गुणा दोसा, तो जैसे जैसी आपकी संगति होती है, जिस तरह के लोग के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके मन पे प्रभाव भी डालता है। इसीलिए हम सभी को अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए। अब ये है कि इसका पैमाना क्या है कि अच्छे लोग कौन है, गुणी लोग कौन है, तो सकारात्मकता जिनके जीवन में है, जिनके विचार में है, जिनके बोली भाषा में है, वही अच्छे लोग हैं, गुणी लोग हैं। तो सकारात्मक विचार का प्रभाव वो हमारे ऊपर भी डालते हैं, हमारे वातावरण में फैलता है। तो इस तरह से हम सभी देखते हैं, पाते हैं कि हमारे जीवन में, जीवन यापन के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए सकारात्मकता बहुत ही आवश्यक है। तो इसी आवश्यकता को हम सभी समझते हुए अपने जीवन में इसे आत्मसात करें।
0: निश्चित तौर पर जे सब करे छे से इतिहास में से हो, नाम करे छे और कार्यक्रम में से हो, आई के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है इस पर हम सब चर्चा कर ली।
1: बिल्कुल, आज ही के दिन यानी 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता और तकनीकी प्रगति की याद दिलाता है। 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया गया था। 11 मई 1940 को बीबीसी की हिंदुस्तानी सेवा ने अपना पहला प्रसारण किया था। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को हुआ था। ये एक सफल कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थी। इन्हें 1992 में पद्म भूषण तथा 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध कहानीकार, रेडियो पटकथा तथा फिल्म पटकथा लेखक सआदत हसन मंटो, इनका जन्म 11 मई 1912 को हुआ था। भारतीय थलसेना के तृतीय थलसेनाध्यक्ष SM श्री नागेश का जन्म भी आज ही के दिन 1903 को हुआ था। इनका इस पद पर कार्यकाल 14 मई 1955 से 7 मई 1957 तक रहा।
0: ये के नाम सब जानकारी प्राप्त करते रही, आई के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है, और कार्यक्रम में आगू बढ़े अपने सबके मैथिली गीत सुनबे छी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: विराम से पहले हम लोग सुन रहे थे भक्ति गीत, मैथिली गीत कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में। इन्हें धन्यवाद देते हैं और जानते हैं अब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को, जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं आशीष कुमार सिंह। आइए सुनते हैं इनसे हालचाल।
2: धन्यवाद प्रतिभा जी। आजुक हालचालक संग हम आशीष। भागलपुर के लग विक्रमशिला सेतु के एक हिस्सा के क्षतिग्रस्त हो यातायात बाधित भ गए। अहि स्थिति में पूर्व मध्य रेल सरायगढ़ से देवघर के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू कलक है। ई ट्रेन 31 मई 2026 धरि प्रतिदिन चलत। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड दोहरीकरण के कारण 45 ट्रेन रद्द कैल गए और 40 के रूट बदलल गए। 14 मई धरि बिहार संपर्क क्रांति आ पटना इंटरसिटी संगे बहुत रास ट्रेन प्रभावित रहत। ज्योतिषा चार्ज के अनुसार 17 मई से ज्येष्ठ अधिक मास यानी मले मास के शुरुआत भ रहल अछि। एकर संगे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञ पवित्र सब समेत सबटा मांगलिक कार्य पर रोक लागि जायत। 15 मई धरि विवाह के शुभ मुहूर्त उपलब्ध अछि। सरायगढ़ में सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत 260 गर्भवती महिला सबके स्वास्थ्य जाँच कैल गेल। चारूटा अस्पताल में डॉक्टर सब गर्भवती महिला सबके जांच कलत और दवाई उपलब्ध करौलत। बाबूबरी में बलिराजगढ़ परिसर में खुदाई में भेटल सामान सबके सुरक्षा के लेल विशेष गश्त रात में कैल जा रहा।

रहल अछि। परिसर के चारू प्रवेश द्वार पर पहरा बढ़ा देल गेल अछि। बिस्फी के प्राथमिक विद्यालय दुबियाही में यूथ आ यूको क्लब के गठन कयल गेल। सदस्य सबके ड्रेस कैप भेंट कयल गेलन। मधुबनी जिला के 150 से बेसी सरकारी विद्यालय सबके भूमि अतिक्रमण के चपेट में अछि। एहि से नवका भवन निर्माण और पेयजल व्यवस्था प्रभावित भ रहल अछि। डीओ सबटा विद्यालय के एचएम के भूमि अतिक्रमण पर एक सप्ताह में रिपोर्ट दे के निर्देश दिलत है। सीतामढ़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत केंद्रीय टीम सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कलत। टीम लोक सब से फीडबैक लेलत और सफाई, कचरा उठाव आ सार्वजनिक शौचालय की स्थिति के जानकारी सेहो प्राप्त कलत। सीतामढ़ी में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी सब अहाँ के क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन कने लत है। विद्यालय के दिस से खो खो और फुटबॉल में स्वर्ण पदक जितलत, जखन कि कुल 60 खिलाड़ी में से 31 का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भेल अछि। विभूतिपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय विभूतिपुर पूरब के प्रांगण में समग्र शिक्षा के अंतर्गत किशोरी सबके लिए कार्यक्रम का अधिष्ठापित सखी सहायता डेस्क के अंतर्गत एकटा विशेष कार्यक्रम का आयोजन कयल गेल। समस्तीपुर में बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन पटोरी अंचल कमेटी के बैसार भेल। एहिमे 29 मई के शिवरा में अंचल सम्मेलन करे नए और सबटा शाखा में सम्मेलन करे के निर्णय सेहो लेल गेल। गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र में बदलत मौसम के बीच मच्छर सबके प्रकोप तेजी से बढ़ रहल अछि। दिन भर के गर्मी और साँझ होते नमी से मच्छर सबके पनपे के लेल अनुकूल वातावरण तैयार भ रहल अछि। एहि से लोक सबके परेशानी लगातार बढ़ रहल छन। साँझ होते मच्छर के हमला शुरू भऽ जाइत अछि और लोक घर में बैसनाय सेहो मुश्किल भ रहल छन। महेशवाड़ा पंचायत में 19 मई के सहयोग शिविर के तैयारी के लेल नोडल अधिकारी राजीव कुमार के अध्यक्षता में बैसार आयोजित भेल। बैसार में विभिन्न अधिकारी सब शिविर के सफलता के लेल समस्या सबके समाधान पर चर्चा कलत। गढ़हरा में मदर्स डे के अवसर पर साइकिल पे संडे अभियान के अंतर्गत बिहट नगर परिसर क्षेत्र में चकवल वार्ड संख्या 20 स्थित ब्रह्म बाबा स्थान परिसर में चेतन सभा में गाछ सबके वितरण कयल गेल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सबटा जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश दिलत है कि सत्र 2026-28 के लेल 11वीं कक्षा में नामांकन के 13 मई धरि अपडेट कयल देल जाए। अपने सब सुन रहल छी हालचाल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने सब सुन रहल छी हालचाल। वर्षों से बंद पड़ल रैयाम चीनी मिल के फिर से चालू करे के दिशा में राज्य सरकार के पहल से अई इलाका में किसान और व्यवसायी नबका उम्मीद जगलन है। गन्ना विभाग के कमिश्नर परिसर और आसपास के क्षेत्र के जायजा ले के बाद लोग सब को उम्मीद और बढ़ गेल छन। स्थानीय किसान सब के कहना ही छन कि यदि चीनी मिल फिर से चालू भऽ जाए तो क्षेत्र के आर्थिक स्थिति में बड़का बदलाव आयत। लंबा समय से कुसियारक खेती से तौबा कर चुकल किसान सब आ फिर से कुसियारक खेती के तैयारी में जुट रहल छथि। विभागीय अधिकारी सब सेहो किसान सब के कुसियारक उत्पादन बढ़वे के लेल प्रेरित केनाई शुरू कऽ देने छथिन। बहेरी प्रखंड क्षेत्र के लौरिक धाम वनडिहुली में रुद्र महायज्ञ के आठम दिन हवन कुंड के प्रभाव से माहौल भक्तिमय भऽ गेल। यज्ञाचार्य महंत कौशल किशोर दास जी महाराज के नेतृत्व में आठम दिन हवन के कार्य संपन्न भेल। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के नागरिक सब के आब प्रॉपर्टी टैक्स आकलन और भुगतान के अलावा ट्रेड लाइसेंस, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, जल आ सीवरेज कनेक्शन, जन शिकायत, जन मृत्यु प्रमाण पत्र संगे 19

आन सेवा सबके लेल आब नगर निगम के चक्कर नहीं लगवा पड़तन। ई सबटा सेवा सबके ऑनलाइन कऽ देल गेल अछि। सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार 19 मई के पंचायत सरकार भवन में सहयोग शिविर आयोजित करे के निर्देश दलत। सब महीना के तेसर मंगल दिन होय वाला एहि शिविर के उद्देश्य नागरिक सबके शिकायत के सुनके ओकर समाधान केनाय अछि। सहरसा में MLT कॉलेज में स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन भेल। एहि में BP, PR, RBS आ ENT जांच के सुविधा देल गेल। 16 मई के वट सावित्री पावनि मनाओल जायत। ई पावनि सुहागिन महिला सबके अपन बड़ के बेसी आयु आ सुखद वैवाहिक जीवन के लेल मनबै छथि। कोरियापट्टी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह के जयंती मनाओल गेल। राघवपुर प्रखंड क्षेत्र के नगर पंचायत सिमराही में मातृ दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओम शांति केंद्र में भव्य कार्यक्रम के आयोजन भेल। हरलाकी प्रखंड के कलना आ बिस्टौल गाम में ऐतिहासिक कल्याणेश्वर महादेव आ विश्वामित्र स्थान के विकास होयत। पर्यटन विभाग 27 करोड़ रुपया के राशि एहि के लेल स्वीकृत कऽ चुकल छथि। टेंडर प्रक्रिया 6 जून से शुरू होयत। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल अस्पताल में नवका डायलिसिस सेंटर शुरू भऽ गेल। एहि सॅ किडनी के मरीज सबके राहत भेटतनि। एहि संग सम्पन्न होइत अछि आजुक हालचाल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: छोट सनक व्यवसायिक विश्रामक बाद एक बार फिर से स्वागत है चाहक अपन कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। आज कार्यक्रम उपस्थित छी हम आशीष
2: और मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति। आशीष जी, मौसम की जानकारी हम अपने श्रोताओं तक देते हैं। पटना मौसम विज्ञान विभाग केंद्र ने बताया कि 11 मई से उत्तर बिहार के कई जिलों में मौसम का बदलना शुरू हो जाएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया में गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 12 मई को मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और आसपास के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा बना रह सकता है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में इनके लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं बात करें आज के तापमान की, तो आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। आसमान साफ रहेगा, दोपहर में तेज धूप निकलने की संभावना है।
1: और एक बेर वैज्ञानिक सब सेहो आशंका जतैलथि कि एहि साल मानसून में जे छै बरखा साल से सामान्य से बहुत कम भऽ सकैत अछि।
2: और यदि बात करें लोकल अपडेट की, तो दरभंगा में मेडिसिन ओपीडी में, डीएमसीएच के मेडिसिन ओपीडी में आज के दिन जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी रहेगी उनमें से हैं डॉक्टर यूसी झा, डॉक्टर आरके झा, डॉक्टर एके प्रसाद, डॉक्टर दुर्गेश की ड्यूटी रहेगी और साथ ही न्यूरो ओपीडी में आज रहेंगे डॉक्टर स्नेह कुमार झा उपस्थित।
1: तो ये हम सब का जानकारी प्राप्त करते रही कि मौसम के और लोकल अपडेट्स के बारे में। तो मौसम के बारे में एक चीज फिर अखन कहल गया कि फिर दू तीन दिन अहाँ के 48 घंटा के जब फिर आसमान में अहाँ के आंधी बारिश के संगे संगे मेघ रह सकते हैं और बरखा भ सकते हैं। तो कतौ न कतौ बदलत मौसम अखन बीमारी के प्रकोप से हो बढ़ गया है और बच्चा सब जे छथि हुनका और बचा के रखे के समय है कि बच्चा सब के बीच में बहुत तरह के बीमारी फैल रहल छन। और यही मौसम में खान पान पर सेहो ध्यान राखी, क्योंकि तुरंत में गर्मी तुरंत में ठंडा होइत अछि और खास कऽ के मच्छर के जेना कि हम सब हालचाल में सेहो चर्चा करैत रही
2: कि मच्छर के लिए मौसम अनुकूल है पनपने के लिए। बिल्कुल,
1: तब मलेरिया, डेंगू, डायरिया सनक बहुत रास एहन बीमारी सब जे ई मौसम में फैलैए, तो एहिमे हमरा अहाँ के सावधानी रखबाक चाहिए।
2: निश्चित तौर पर आपने कहा कि खान पान पे ध्यान देनी होगी। तो हमारे घर में

जो बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, खास करके उन पे ध्यान देनी बहुत ही आवश्यक है। मौसम के अनुकूल क्या खान पान उनके लिए सही है, ये तो निश्चित तौर पे ध्यान देनी ही पड़ेगी। और साथ ही हम अपना ध्यान भी अच्छे से रखें, क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारे परिवार वालों का ख्याल कौन रखेगा, ये सोच के। स्वस्थ रहना तो सबके लिए ही आवश्यक है और मौसम के अनुसार हम अपने आप को ढालें ये हमसे ही संभव है। तो हम ये सोच लें और इसे अपनाना शुरू करें अपने दैनिक जीवन में, तो निश्चित तौर पे हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार वालों को भी अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे उनकी। और आज हम लोगों ने इतिहास में जाना कि आज ही के दिन जो है जो सोमनाथ मंदिर के विषय में बात किए कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया गया था आज ही के दिन, जैसे कि हमने 1951 की बात की थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर आज सोमनाथ अमृत पर्व वहाँ मना रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। वे भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभाभिषेक करेंगे तथा बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। और कार्यक्रम में हम सभी हालचाल के माध्यम से सूचना पहुंचाए हैं, अपने आसपास की जो गतिविधियाँ हैं उसे पहुँचाए अपने श्रोताओं तक, मैथिली गीत भी सुनवाए हैं और आगे बातचीत करेंगे कि आज हम सभी ने जाना इतिहास में कि आज के दिन यानी 11 मई को भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, जो कि 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण सफलता और तकनीकी प्रगति की याद दिलाता है। तो इस विषय पर हम सभी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले प्रस्तुत करते हैं एक फिल्म संगीत प्यारा सा।

0: आइ जे एखन हमसब अहाँके रेडियो सेटके माध्यमसँ पहुँच रहल छी तऽ कतहु ने कतहु एहि प्रौद्योगिकीके पहचान अछि। हम अहाँ आइ सबठाम एतऽ बाजै छी आओर लोक सब लग रेडियो सेटके माध्यमसँ हमर सबके गप पहुँच रहल अछि। तऽ आइ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जेनाकि हमसब चर्चा करैत रही से अछि, आओर कतहु ने कतहु विज्ञान आत्मनिर्भरताके दिशामे हमरा अहाँके बढ़बैत अछि। प्रत्येक वर्ष यानि कि आइके दिन 11 मईके भारतमे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाओल जाइत अछि।
1: बिल्कुल,
0: ई दिन खाली वैज्ञानिक उपलब्धिके उत्सव नहि अछि बल्कि ई सोचके प्रतीक अछि जाहिसँ भारतके अनुयायीसँ नेता बनबैके राह देखबैत अछि।
1: बिल्कुल, आओर इसका उद्देश्यके यदि बात करें तऽ भारतीय वैज्ञानिकों आओर इंजीनियरों की वैज्ञानिक आओर तकनीकी उपलब्धियोंमे जो उनकी जो विशिष्टता है उसे स्मरण करना है, आओर पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस दिन का खास नाम रखा गया था। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया गया था, क्योंकि इन्हीं वैज्ञानिकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1998 में सफल पोखरण परीक्षण संभव हो पाया था।
0: और अगर किछे गप करी परीक्षण के तो एकर ऑपरेशन शक्ति नाम देल गेल छले, से भारत के तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर से बनबैत अछि, और स्वदेशी विमान हंस 3 अपन पहिल उड़ान भरने छल। तहिया से ही प्रौद्योगिकी नवाचार और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहल अछि।
1: बिल्कुल, और इसकी शुरुआत के विषय में तो हम लोगों ने जाना कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था 1998 में, क्योंकि इसी दिन पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। ऑपरेशन शक्ति की बात आपने की, हंसा 3 की बात आपने की, त्रिशूल मिसाइल जो है DRDO की सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था। तो इन तीनों उपलब्धियों के सम्मान में 11 मई को यानी आज के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस घोषित किया गया। इसे इस दिन वैज्ञानिकों को सम्मान दिया जाता है, खास रूप से DRDO, इसरो और CSIR के वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम किया जाता है। युवाओं को प्रेरणा मिलती है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में करियर के लिए मोटिवेट करना होता है इस माध्यम से। और मेक इन इंडिया, आपने सही कहा कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वदेशी तकनीकी और आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी मिलता है। स्टार्टअप को बढ़ावा मिलता है, नई तकनीकी इनोवेशन को सपोर्ट मिलता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ स्कूल में, कॉलेज में विज्ञान मेले, क्विज, रोबोटिक्स कंपटीशन आदि का भी आयोजन किया जाता है आज के दिन को बढ़ावा देने के लिए।
0: पहले जो अगर हम सब गप करी तो तकनीक का अर्थ हम सब बुझे रही वैज्ञानिक संस्थान, रॉकेट या कंप्यूटर, मुदा आइ तकनीक के अर्थ बदल गेल अछि। किसान के हाथ में मौसम बतबे वाला मोबाइल और महिला के हाथ में डिजिटल पेमेंट के संगे अगर गप करी तो स्कूल के बच्चा के हाथ में रोबोटिक किट।
1: बिल्कुल,
0: प्रौद्योगिकी आब प्रयोगशाला से निकल के खेत खलिहान आब गाम गली तक पहुँच रहल अछि। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जेहन एहन योजना से ही संभव भऽ चुकल अछि। और अपन क्षेत्र में अगर गप करी तो हमरा सबके देश अहाँके एकर महत्व और बढ़ जाइत अछि। बाढ़, सुखाड़, कम उत्पादकता जेहन समस्या एतौ बहुत समय से रहल अछि और एहि पर ई तकनीक मदद कऽ रहल अछि। दरभंगा, मधुबनी में किसान ड्रोन से कीटनाशक आइ काल्हि समय में छिड़क रहल छथि। ई बहुत पैघ गप अछि। सोलर पंप से सिंचाई कऽ रहल छथि। ई कतौ ने कतौ हमरा अहाँके बढ़ा रहल अछि। अटल टिकरिंग लैब के जरिए स्कूल में बच्चा आब रोबोट, 3D पेंटिंग और कोडिंग सीख रहल छथि। बाढ़ पूर्वानुमान में ऐप और रियल टाइम डेटा से बहुत रास लोक सबके जान बच रहल छन। और मधुबनी पेंटिंग जेहन कला आब ONDC और एहन ऑनलाइन माध्यम से देश दुनिया तक पहुंच रहल अछि।
1: और देखिए ना, अभी हम सभी मौसम की जानकारी हर दिन साझा करते हैं अपने श्रोताओं के साथ, तो तकनीकी विकास का ही ये तो परिणाम है। वहीं यदि बात करते हैं रक्षा तकनीकी की, तो आत्मनिर्भर भारत ब्रह्मोस का नाम ले सकते हैं, तेजस फाइटर जेट का नाम ले सकते हैं, परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का नाम ले सकते हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम ले सकते हैं, जो मिशन शक्ति से भारत अंतरिक्ष में भी महाशक्ति के रूप में है। तो इन सब चीज़ों में सब में तो तकनीकी ही है। हेल्थ और बायोटेक की यदि बात करें तो अभी कुछ

0: साल पहले हम सब पूरे देश के दुनिया के ही लोग जो कोविड से प्रभावित हुए थे, तो कोवैक्सीन दुनिया की फार्मेसी, इसके बाद आयुष्मान भारत डिजिटल की बात आपने की है, जो 50 करोड़ लोगों को का जो है हेल्थ है उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन जो उसका लाभ है वो मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए सब जगह देखें तो तकनीकी ही जिम्मेदार है, जो दिनान दिन इसका विकास होते जा रहा है हमारे देश में।
1: और अगर तकनीकी के गप करें तो जखने को चीज नीक हो जाए कनी चुनौती से हो रही थे, और डिजिटल साक्षरता के कमी ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के असमान पहुंच और तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता का डर से हो समा रहा है। स्कूल स्तर पर कोडिंग, विज्ञान मेला और नवाचार प्रतियोगिता के जरिए एक बढ़ाया जा सकते हैं। गाँव गाँव में डिजिटल लैब बनब पड़त। सबसे पैघ गप तकनीक के भाषा है तेकरा बाधा से मुक्त केनाइ बहुत बेसी जरूरी है। मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी में कंटेंट उपलब्ध हुए, लोक लोक के बीच में हुनकर जे मातृभाषा छन तई में कंटेंट उपलब्ध भ जाए, तई में बदलाव एक बेर देखाय पड़त। और बेसी
0: निश्चित
1: और गप करी तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमरा अहाँ के मोन पारित है कि विकास के रास्ता खाली संसाधन से नहीं सोच से बनत है। जखन भारत 1998 में पोखरण में अपन पैर रखने छल तो वही समय दुनिया के देखेला कि सीमित संसाधन में केना ई संभव भ सकैत अछि।
0: निश्चित तौर पर, और भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड प्रत्येक वर्ष भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है, जो कि भारत ने पोखरण में परमाणु का सफल परीक्षण किया था। तकनीकी की बात हमने की है आशीष जी, तो तकनीकी विकास के लिए टेक्नोलॉजी आपने कहा कि इसकी बात की है, इसके पीछे चार स्टेप पूरी साइंस है। भारत हो या कोई और भी अन्य भी देश हो, हर जगह प्रोसेस यही होता है। जैसे रिसर्च और इनोवेशन इसका पहला है, डेवलपमेंट और टेस्टिंग, साथ ही कमर्शियलाइजेशन, और इसका चौथा यदि कह सकते हैं तो इस्तेमाल और अपग्रेड, यानी जनता तक पहुंचना। आपने कहा कि भाषा के माध्यम से, सही बात है, भाषा इतनी सहज और सरल होनी चाहिए कि हमारे हर क्षेत्र के व्यक्ति इस बात को समझ सकें और उसमें आगे बढ़ सकें।
1: और आई तो भारत के स्टार्टअप AI, स्पेस टेक और ग्रीन एनर्जी में अपन नवका पहचान बना रहा है। और 1947 के विकसित भारत तखने साकार होयत जखन गाम के आखिरी बच्चा सेहो तकनीकी के अपन रोजमर्रा में शामिल कर ले। तो कतौ न कतौ आब भारत बदल रहा है, और यह बदलत भारत के अबै वाला समय जे छे 2047 के जे हम सब अहाँ के रखने छी, तो ओहि समय धरि हम सब अहाँ के निश्चित तौर पर तकनीकी क्षेत्र में सेहो विकसित भ जाए।
0: निश्चित तौर पर, अपने बात की 2047 तक की, तो उसमें 6G लॉन्च 2030 तक दुनिया में सबसे पहले, और हाँ, और ग्रीन हाइड्रोजन, पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन कार, ये आगे आने वाले समय में बहुत कुछ हम सोच सकते हैं और विकसित हो भी रहा है। और AI की बात आपने की, तो खेती, हेल्थ, एजुकेशन में, खास करके एजुकेशन में और नौकरी क्षेत्र में, देखिए ना, हमारे देश विदेश में काम करने वाले बच्चे घर से भी जो बहुत सारे लोग हैं ऑफिस का काम कर पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, बहुत कुछ, तो ये सब तकनीकी के कारण ही संभव हो पाया है। और हम अपने रेडियो सेट के माध्यम से जो सूचना प्रसारण जो करते हैं, कहते हैं कि सूचना प्रसारण और मनोरंजन, तो ये भी तकनीकी विकास का सबसे कह सकते हैं कि अहम एक उदाहरण है। और अभी हम सभी शामिल करते हैं समसामयिकी को अपने इस कार्यक्रम में, तो इसमें सबसे पहले कहना चाहेंगे कि 8 विभागों के सचिव समेत 10 IAS और 16 IPS अधिकारियों का तबादला, पुलिस प्रशासन के शीर्ष अफसरों को नई जिम्मेदारी, 2 DG, 9 ADG और 4 IG स्तर के अधिकारियों का तबादला, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, ऊर्जा, वित्त, भवन निर्माण और जल संसाधन के नए सचिव नई की तबादला हुई, और नैयर हसनैन खान को BSAP का ADG बनाया गया।
1: और अब जमीन रजिस्ट्री के लेल 15 मई से नबका नियम लागू भ रहल अछि। CO देतत रजिस्ट्री से 10 दिन पहले जमीन के पूरा कुंडली, ये कतौ न कतौ बहुत नीक पहल अछि बिहार में। एहिसे की छै, जमीन लै वाला और जमीन बेचे वाला दुनू आदमी अहाँ के निश्चिंत रहतत।
0: बिल्कुल,
1: तो एहन पहल हेबाक चाही। और UGC नेट से संबंधित एकटा सवाल अछि कि खाली एक विषय के

0: आप एकटा आवेदन देल जा सकैत अछि।
1: अच्छा, मानसून के पहले 45,000 पुल पुलिया की होगी जांच। ये ग्रामीण सड़कों पर बने पुल पुलियों की स्थिति पर सरकार ने जो इसकी चौकसी बढ़ा दी है। मानसून के पहले करीब 45,000 ग्रामीण पुल पुलियों की जांच और विशेष निगरानी का निर्देश सभी कार्यपालक अभियंता को दे दिया गया है। हिमंत कल लेंगे शपथ। हिमंत विश्व शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद के की शपथ लेंगे।
0: और आप किछे बिहार है, बिहार के हमर सबके खास कर किछे पड़ोसी देश नेपाल है, तो नेपाल जाए के लेल आप आधार कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य कर देल गेल अछि। और जे अगर 15 साल से कम आयु के बच्चा छ त हुनका लेल जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी देखेनाय अनिवार्य रहतन, तखने ओ अहाँके नेपाल में प्रवेश कर सकै छथि।
1: बिहार की बात आपने की है, तो बिहार के जिलों में PPP मोड पर खुलेंगे वाहन चार्जिंग स्टेशन। हर जिला मुख्यालय से पटना के लिए चलेगी सरकारी बसें। बैटरी और सोलर चालित वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया मंत्री ने। मुख्यमंत्री परिवहन योजना का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी।
0: तो आप किछे दायरा का हमरा सबके किछे घटबे के दिस समय कह रहल अछि, क्योंकि समय बहुत कम
1: सीमित है। बिल्कुल, हम इस कार्यक्रम को लेके आते हैं सीमित समय के लिए, तो और कहते हैं अंत भला तो सब भला। कार्यक्रम को समेटते हुए चलते चलते एक प्यारा सा फिल्म संगीत सुनवाते हैं।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे आपने आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने श्रोताओं की तरफ से भी।
2: और ये सबटा भर ऑलेज कतो न कतो अहाँ के सूचना और
1: विज्ञान के
2: विज्ञान के माध्यम से, तो विज्ञान हमर अहाँ के जीवन के हिस्सा बन चुकल है। बहुत बेर हम सब यो देखे छे कि विज्ञान पढ़ के की हैत, तो विज्ञान पढ़ के इएह हैत। अहाँ के बच्चा में हम सब अहाँ के पढ़ाई लिखाई जखन करित रही ते काल में बहुत आदमी एहन होइ छथि जिनका विज्ञान में मोन लगे छन, बहुत आदमी के आर्ट्स में मोन लगे छन, बहुत आदमी के किछ अहाँ के आन सब्जेक्ट सब में मोन लगे छन। तो कतो न कतो कोनो काज अगर अहाँ कऽ रहल छी, कोनो चीज पढ़ाई कऽ रहल छी, ओहिमे विज्ञान अहाँ के हिस्सा निश्चित तौर पर अछि। अगर अहाँ आइ के समय में व्यापारे करै छी तऽ ओहोमे विज्ञान घुसि चुकल अछि, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग कतो न कतो विज्ञान के देन अछि।
1: कोई भी काम किया अब तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि हर काम के लिए विज्ञान पे हम लोग लगभग आश्रित हो चुके हैं। देखिए सुबह से उठते हैं तब से लेके जो हमारे घर में बिजली की बात हम करते हैं, हर एक चीज़ बिजली से चलने वाली है उसकी बात करें, या फिर हमारे बच्चे जो पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं, या आप घर बैठे अपनी नौकरी पेशा को कर पाते हैं, ये सब तो विज्ञान की ही देन है।
2: और जखन अहाँ भोरे भोर गप कर लो तो आई के समय में तो भोरे भोर उठते सबसे पहले लोग अपन मोबाइले देखे छे, विज्ञान के देन।
1: बिल्कुल, मोबाइल फोन और इसके बिना कह सकते हैं अब तो हर हाथ मोबाइल ऐसा हो गया है, और कहते हैं ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो वो हाथ में जो मोबाइल है आपके मुट्ठी में, आपके हाथ में पूरी दुनिया है, दुनिया की जानकारी है। और ये कैसे संभव हो पाया, विज्ञान के ही माध्यम से तो संभव हो पाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो इसीलिए इसकी पढ़ाई पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है, और हम सभी को इसकी तरफ दिनानुदिन अग्रसर होना चाहिए ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में खास।
2: और प्रौद्योगिकी कोनो चीज अगर बढ़ते तो अपन सोच के कखनो नहीं खत्म करी, सबसे पैघ गप छे कि अहाँ के सोचे के शक्ति नहीं खत्म हुए, तै पर निश्चित तौर पर ध्यान राखी। क्या कि पहले हम अहाँ सौ सौटा मोबाइल नंबर सब सबके कि सबके नंबर मोन रहे छले, लेकिन मोबाइल एला के बाद
1: इतना अधिक भी विज्ञान पे आप कहना चाहते हैं कि आश्रित ना हो जाए कि एक भी नंबर नहीं याद हो। कभी ऐसा होता है आपका मोबाइल फोन चार्ज नहीं है या हैंग हो गया है, और आपकी नहीं और से आप किसी समस्या में फंसे हैं और संपर्क करना चाहते हो, तो एक दो नंबर या दो चार नंबर जो अत्यावश्यक है आपके घर के लिए, दो चार नंबर तो निश्चित तौर पर याद रखनी होगी। तो विज्ञान बहुत ही जो लाभदायक है, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को इस पे हम सभी को समर्पित नहीं करना है, अपने जीवन में अपने सोच का अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते रहना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे इस क्षेत्र में। और इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, तो लेते हैं इस कार्यक्रम के आज के अंक से विदा। तो प्रतिभा प्रीति को
2: और हमारा आशीष के लिए विदा।
1: नमस्कार मिथिला।

हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं। प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
3: साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

0: कथा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे

0: विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको

0: कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं एसबी त्रिपाठी।
2: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
2: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112331 0411 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद विशाल।

0: पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बुहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला का तहफ़ करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज़ के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाओ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बुहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत करें। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने के लिए कहा। यह रायजनी कई मुल्कों में ईंधन की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब खाम तेल

0: मोहतरमा बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम में कांग्रेस, सीपीआईएम और इंतहाई बाएं बाजू ग्रुपों समेत सभी अपोजिशन ताकतों से जोर देकर कहा है कि वो बकौल उनके सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ यकजहत हो जाए। कांग्रेस तर्जमान सौम्य आईच राय ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से इंतहाई बाएं बाजू के ग्रुपों के जिक्र और 2013 में कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ माओ नवाजों के तशद्दुद को याद करने पर सवाल उठाया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने भी इस तजवीज़ को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और मोहतरमा बनर्जी को एक बदउनवान और फिरका परस्त शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी स्वपन बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि ममता के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने उन्हें मनमाने तौर पर काम करने वाली और गैर जमहूरी शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएमएल लिबरेशन के अभिजीत मजुमदार ने भी तृणमूल कांग्रेस को एक दाएं बाजू की तहकुमाना पार्टी कहा है। तमिलनाडु में 9 मुंतखबा असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर एमवी करुपैया नए मुंतखब एमएलएज को हलफ दिलाएंगे। अरकान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवानों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत यकसर तब्दीली लाने वाले मुख्तलिफ इकदाम और इख्तराई सलाहियतों को बरूएकार लाकर भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन हर शख्स को मुल्क के अजीम सफर को मजीद तेज करने और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने की तरगीब देगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत अब काबिले तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। मोर्गन स्टेनले की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की काबिले तजदीद तवानाई की जानिब मुंतकिली बैरूनी इन्हिसार कम करने में मदद फराहम करेगी। ताहम इसकी कामयाबी इस बात पर मुनसर होगी कि मुल्क शमसी सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम शोबों को कितनी तेजी से मकामी सतह पर फरोग देता है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में सोलर मॉड्यूल की पैदावार की सलाहियत मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में तकरीबन दो गुना होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसी तरह सोलर सेल की सलाहियत भी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रा के यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो पहाड़ी रियासत में मौसम के खराब हालात के पेश नज़र मोहतात रहें और महफूज तरीके से सफर करें। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन पहाड़ी खित्ते में कल और परसों बारिश और खराब मौसम के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अकीदतमंदों और सयाहों से अपील की है कि वो अपने सफर के दौरान मौसम से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और इंतहाई एहतियात के साथ अपनी यात्रा की मनसूबाबंदी करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार दिया है। अलबत्ता मगरबी एशिया में कई महीने से जारी महाजाराई के खात्मे के लिए एक माहदे की कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि उन्होंने ईरान के जवाब को पढ़ा है जो उनके बकौल ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तरफ से आया है। तफसील हमारे नामानिकार से।
1: इससे पहले ईरान ने कहा था कि उसने अमरीका की ताज़ा तरीन तजवीज़ के तहत जिसका मकसद मगरबी एशिया में तनाज़े को ख़त्म करना है अपना जवाब भेज दिया है। ये जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है जो ईरान और अमरीका के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की इरना खबर एजेंसी ने कहा कि ईरान के जवाब में तनाज़े के खात्मे और अबनाए हुरमुज में समंदर इलाके की सलामती को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है जो तेल ले जाने वाले जहाज़ों का एक अहम आलमी रास्ता है। ईरान के सदर मसूद पेजिशियान ने कहा कि मगरिब के साथ मुज़ाकरात को हथियार डाल देने या फौज वापस बुलाने के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी दौरान इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की तरफ से जवाब दिए जाने के बाद कल रात सदर ट्रंप से बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खीरों को ख़त्म करने की ज़रूरत से इत्तेफाक किया जो मुज़ाकरात का एक अहम मौजू है। सदर ट्रंप ने फौजी सूरत हाल का जिक्र करते हुए ईरान को फौजी तौर पर शिकस्त खुर्दा

0: करार दिया और दावा किया कि ईरान की दिफाई और हमला करने की सलाहियतों को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के ताकतवर यूरेनियम ज़खीरे पर करीबी नज़र रख रहा है। न्यूज़ डेस्क से आशीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: फुटबॉल में आज सूचाऊ के मकाम पर 17 साल की उम्र तक के खवातीन एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इस मैच में कामयाबी से भारत 17 साल की उम्र तक की खवातीन फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा, जो खवातीन फुटबॉल में मेरिट की बुनियाद पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहली तारीखी रसाई होगी। फुटबॉल में भारत को कल जद्दा में 17 साल की उम्र तक के एएफसी एशियन कप के ग्रुप डी के अपने दूसरे मैच में उज़्बेकिस्तान के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत की 17 साल की उम्र तक के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवाम पेट्रोल डीजल और गैस का इस्तेमाल किफायत शियारी से करें। वजीर आजम ने ये बात हैदराबाद में 5,400 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की तकरीब में कही। तमिलनाडु में नौ मुंतखब वजीर आला और टीवीके के सरबराह विजय की हलफबरदारी से मुतालिक खबर भी अखबारों में मुश्तरका तौर से नुमाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, टीवीके चीफ के अलावा नौ दीगर अराकीन असेंबली की भी हलफबरदारी, कई बड़ी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। यूपी काबिना में तौसी से मुतालिक खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि यूपी काबिना में तौसी, 6 नए वुजरा शामिल, 2 नए वुजरा का प्रमोशन। एक बार फिर बतौर वजीर आला आसाम हिमंत बिस्वा सरमा 12 मई को हलफ लेंगे, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
1: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला का तहफ़ करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे, वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हिमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाऊ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: तिरासी दशमलव 1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: इधर
3: आइए इधर।
8: इधर?
3: हाँ।

0: विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए सहयोग पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट की जल्द होगी शुरुआत। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से भी इसमें सहयोग की अपील की।
1: हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नागरिकों से वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हुर्मुज जलडबरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल हो गई है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के बाद भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर नेपाली नागरिकों की भीड़ देखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अररिया में पेट्रोल की

जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए आज से सहयोग पोर्टल की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय से इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सहयोग पोर्टल आम लोगों की शिकायतों को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से निपटाने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर एकीकृत ऑनलाइन

0: दिन के अंदर उनका निष्पादन कर आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण करेंगे। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस पथ से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने बताया कि जमीन निबंधन कराने के समय में आवेदकों को 13 प्रकार की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि जमीन की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण निबंधन के बाद विवाद नहीं हो, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट तैयार की गई है, जिसके जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राज्य की सभी चीनी मिलों को गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर सर्विस CHCS संचालित करना होगा। वर्तमान में सिर्फ 3 चीनी मिलों ने CHCS स्थापित किए हैं। गन्ने की खेती के रकबा विस्तार के उद्देश्य से चीनी मिलों को CHCS की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार कृषि विभाग और जीविका द्वारा स्थापित CHCS में गन्ना फसल से संबंधित विशेष कृषि यंत्रों की कमी भी चिन्हित की गई है। गन्ना विभाग के अधिकारियों और चीनी मिलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गन्ना संबंधित कृषि यंत्रों की आवश्यकता का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। साथ ही इन सूचनाओं के आधार पर शीघ्र समेकित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। राज्य में मॉनसून से पहले 45,000 पुल पुलियों की जांच की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार जांच का निर्देश कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया है। इस विशेष निगरानी अभियान में अनियमितता या गड़बड़ी करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी पटना में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं। नई दरों के अनुसार घरेलू PNG की कीमत 50 पैसे बढ़कर 49.94 रुपये हो गई है। वहीं व्यावसायिक PNG की कीमत बढ़कर 93.27 रुपये प्रति SCM हो गई है। औद्योगिक PNG के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इधर CNG की दर 1 रुपये बढ़कर 89.90 रुपये प्रति किलो हो गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में अगले एक सप्ताह तक आंधी बारिश की स्थिति बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का पूर्वानुमान जारी किया है।
2: दिनांक 11 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के जलालगढ़ में सबसे अधिक 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं लखीसराय के चानन में 32.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर राज्य में बाढ़ संकट प्रबंधन टीमों का गठन कर इन्हें सक्रिय किया जाना चाहिए। श्री शाह ने संभावित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों के लिए नई दिल्ली में आयोजित

समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से देश के केंद्र शासित और राज्य सरकारों को बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया। पूर्व मध्य रेल बिहार से बेंगलुरु के लिए एक विशेष ट्रेन का परिचालन करेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि 14 मई से 12 जुलाई के बीच सहरसा और यशवंतपुर के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं पूर्णिया कोट और सहरसा से आनंद विहार के लिए चल रही ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है। वहीं दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे स्टेशन के पास स्थित पश्चिम संपार फाटक को बंद कर सो जाने वाले गेटमैन को रेलवे ने निलंबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में एसटीएफ की टीम ने बक्सर जिले से एक व्यक्ति विशाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। बक्सर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडे पट्टी निवासी विशाल पर एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और पीए हत्याकांड मामले में उसकी संलिप्तता पाई गई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने विशाल की गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण नहीं बताया है। समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने कहा है कि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र शिवहर पहुंचने पर डॉ. श्वेता ने यह बात कही। पूर्वी चंपारण जिले में GRP ने तस्करी के लिए भागलपुर ले जाए जा रहे 21 बच्चों को मुक्त कराया है। रेल पुलिस थानाध्यक्ष भरत प्रसाद ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के BD चौक के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 41 लीटर नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कुर्सेला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 20 किलो गांजा के साथ एक महिला समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। IPL में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात रायपुर में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। इससे पहले दिन के एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। गुजरात का प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने राज्य में IAS अधिकारियों के तबादले पर लिखा है, पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अफसरों को नई जिम्मेदारी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, राज्य में निगरानी कैडर समाप्त, बिहार पुलिस में समायोजित होंगे इसके अधिकारी। प्रभात खबर ने नेपाल सरकार की ओर से जारी एक आदेश पर लिखा है, नेपाल जाना है तो आधार कार्ड पहचान पत्र अनिवार्य, सीमा पर बढ़ी चौकसी। दैनिक जागरण लिखता है, तमिलनाडु में विजय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रीय सागर ने लिखा है, ईरान ने समुद्र में 3,000 बैरल तेल बहाया, देश के पास तेल स्टोर करने की जगह कम पड़ी। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार के सभी जिलों में PPP मोड पर खुलेंगे चार्जिंग स्टेशन, हर जिले से पटना के लिए चलेगी सरकारी बसें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए सहयोग पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट की जल्द होगी शुरुआत। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, कटिहार

0: और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ
8: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एकै क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाशवाणी दरभंगा।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं अंजुमन में। सामीन, मोहम्मद आसिफ अली न सिर्फ आज़ादी तहरीक में सरगम रहे बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले सफ़ीर बनाए गए और अमेरिका यूएसए में सफ़ीर बनकर मुल्क का नाम रोशन किया। साथ ही वह उड़ीसा के गवर्नर बने और स्विट्ज़रलैंड में वज़ीर के तौर पर भी उन्होंने खदमात अंजाम दी। सामीन, इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है आज की ख़ास पेशकश का। हम अंजुमन में आपके लिए शायरों की महफिल लेकर आए हैं। आइए शायर खालिक हुसैन परदेसी की निजामत में सजने वाली महफिल सुखन की जानिब चलते हैं। शिरकत करने वाले शोराए कराम हैं मोहम्मद अता हुसैन अंसारी और प्रेम किरण।
1: मोहतरम हजरात, आज के इस महफिल सुखन में तमाम शोराए कराम का खैर मकदम है। इस महफिल सुखन में जो शोराए कराम हिस्सा ले रहे हैं उनमें जनाब मोहम्मद अता हुसैन अंसारी उर्फ अता आबदी साहब और प्रेम किरण और नाचीज़ खालिक हुसैन परदेसी। मैं सबसे पहले जनाब मोहम्मद अता हुसैन अंसारी उर्फ अता आबदी से गुजारिश करता हूँ इन चार मिसरों के साथ कि यह सर्द फासला कल रात कटने वाला था, मैं उस चिराग की लौ से लिपटने वाला था, बचा लिया तेरे खुशबू के फ़र्क ने वरना मैं तेरे वहम में तुझसे लिपटने वाला था। मोहतरम जनाब अता आबदी,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल के चंद अशआर समाअत फरमाएं। मतला है, कब है अपना होने वाला, कब है अपना होने वाला, वक्त आने पर सोने वाला।
1: वाह,
2: कब है अपना होने वाला, वक्त आने पर सोने वाला, और कब तक यारो वही कहानी, एक था जादू टोने वाला।
1: वाह वाह,
2: कब तक यारो वही कहानी, एक था जादू टोने वाला, और वक्त के आगे झुकता लेकिन वक्त है किसका होने वाला।
1: वाह वाह,
2: वक्त है किसका होने वाला, और कौन है दिल के अरमानों को सबकी खातिर ढोने वाला। सबकी खातिर ढोने वाला, और हक्का बक्का तन्हा सा है बीज वफा के बोने वाला।
1: क्या बात,
2: बीज वफा के बोने वाला, और अशकों से महरूम हुआ है, अशकों से महरूम हुआ है सबकी खातिर रोने वाला।
3: क्या
2: बात, सबकी खातिर रोने वाला, और दाएं बाएं गिर जाता है, दाएं बाएं गिर जाता है बैठे बैठे सोने वाला। बैठे बैठे सोने वाला, दाएं बाएं गिर जाता है बैठे बैठे सोने वाला, और अपना होना खेल नहीं है, अपना होना खेल नहीं है, कौन है अपना होने वाला, कौन है अपना होने वाला, और दिल है सब पर बोझ मगर दिल दिल है सब पर

0: बोझ मगर दिल बोझ है सबका ढोने वाला, बोझ है सबका ढोने वाला। और आखिरी शेर कि सबने दुनिया पाई लेकिन सबने दुनिया पाई लेकिन सब है दुनिया खोने वाला, और कब है अपना होने वाला वक्त आने पर सोने वाला। एक दूसरी गजल के चंद अशआर, दरिया को तशनगी के हवाले से सोचिए, दरिया को तशनगी के हवाले से सोचिए, इस दिल को बेरुखी के हवाले से सोचिए, इस दिल को बेरुखी के हवाले से सोचिए। और एक उम्र पर भी उसको न पहचान पाए हम, एक उम्र पर भी उसको न पहचान पाए हम, दुनिया को अजनबी के हवाले से सोचिए, दुनिया को अजनबी के हवाले से सोचिए। और एक एक लम्हा नफ्स की हुरमत बताएगा, एक एक लम्हा नफ्स की हुरमत बताएगा। हर गम को जिंदगी के हवाले से सोचिए, हर गम को जिंदगी के हवाले से सोचिए। और दानिशवरों के हम भी तो मातूब हैं हमें, दानिशवरों के हम भी तो मातूब हैं हमें, पिंदारे आगही के हवाले से सोचिए, पिंदारे आगही के हवाले से सोचिए। और दावा फरिश्ता होने का सबको भले ही हो, दावा फरिश्ता होने का सबको भले ही हो, हमको बस आदमी के हवाले से सोचिए, हमको बस आदमी के हवाले से सोचिए। और सब कुछ है इस जहान में फिर भी यहाँ पे आप, सब कुछ है इस जहान में फिर भी यहाँ पे आप, इस घर को बेघरी के हवाले से सोचिए, इस घर को बेघरी के हवाले से सोचिए। और मेरा चिराग शहरे खमोशा में जल उठा,
1: क्या बात,
0: मेरा चिराग शहरे खमोशा में जल उठा, जख्मों को रोशनी के हवाले से सोचिए, जख्मों को रोशनी के हवाले से सोचिए। और कुछ फूल हमने कर दिए हैं दस्त के सुपुर्द,
1: क्या बात,
0: कुछ फूल हमने कर दिए हैं दस्त के सुपुर्द, खुशबू को बेबसी के हवाले से सोचिए, खुशबू को बेबसी के हवाले से सोचिए। और मक्ता देखें कि माना अता से आपका रिश्ता नहीं मगर, माना अता से आपका रिश्ता नहीं मगर, आप उसको शायरी के हवाले से सोचिए, माना अता से आपका रिश्ता नहीं मगर, आप उसको शायरी के हवाले से सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल और मतला है, साथ रखती है उम्र भर की कशिश, साथ रखती है उम्र भर की कशिश, है अजब हुस्ने मोतबर की कशिश, है अजब हुस्ने मोतबर की कशिश, साथ रखती है उम्र भर की कशिश। और जिंदगी मुझसे मिलने वाली है, जिंदगी मुझसे मिलने वाली है, जिंदगी मुझसे मिलने वाली है, जिंदा रखे है इस खबर की कशिश,
2: क्या बात,
0: जिंदगी मुझसे मिलने वाली है, जिंदा रखे है इस खबर की कशिश। और अपने मरकज़ पे रह सके कब हम, अपने मरकज़ पे रह सके कब हम, हाय अफसोस इधर उधर की कशिश, हाय अफसोस इधर उधर की कशिश। और ये शेर, कैसे भूलें तिलिस्म मस्नुई, कैसे भूलें तिस्म मस्नुई, हमने देखी है बेहुनर की कशिश,
2: क्या बात,
0: कैसे भूलें तिलिस्म मस्नुई, हमने देखी है बेहुनर की कशिश। और ये शेर के, शाख दर शाख फूल फल पत्ते, शाख दर शाख फूल फल पत्ते, खूब है खूब ये शजर की कशिश, खूब है खूब ये शजर की कशिश, साथ रखती है उम्र भर की कशिश, है अजब हुस्ने मोतबर की कशिश। और ये शेर कि यूं ही दस्ते दुआ दराज रहे, यूं ही दस्ते दुआ दराज रहे, यूं ही दिल में रहे असर की कशिश, यूं ही दिल में रहे असर की कशिश। और ये शेर कि अब कोई गम कहाँ है मंजिल का, अब कोई गम कहाँ है मंजिल का, है कुछ ऐसी ही रह गुजर की कशिश, है कुछ ऐसी ही रह गुजर की कशिश, अब कोई गम कहाँ है मंजिल का, है कुछ ऐसी ही रह गुजर की कशिश। और ये शेर कि जख्म अच्छा ना हो तो बेहतर है, जख्म अच्छा ना हो तो बेहतर है, कह रही है।

0: है ये चारा गढ़ की कशिश, जख्म अच्छा ना हो तो बेहतर है, कह रही है ये चारा गढ़ की कशिश, कह रही है ये चारा गढ़ की कशिश, और मक्ता की जिंदगी हरकतो अमल से है।
1: क्या बात,
0: जिंदगी हरकतो अमल से है, मुझसे पूछो अता सफर की कशिश, मुझसे पूछो अता सफर की कशिश, जिंदगी हरकतो अमल से है, मुझसे पूछो अता सफर की कशिश, साथ रखती है उम्र भर की कशिश, है अजब हुस्ने मोतबर की कशिश।
2: क्या बात,
0: एक गजल चंदाशार
1: जी जय इनायत,
0: मतला है, किया है मौजों ने यूं किनारा,
2: किया है मौजों,
0: किया है मौजों ने यूं किनारा, किनारे सहमे हुए पड़े हैं।
1: क्या बात,
0: किया है मौजों ने यूं किनारा, किनारे सहमे हुए पड़े हैं, पड़े हैं, न कोई हरकत न कोई हलचल, नज़ारे सहमे हुए पड़े हैं।
2: क्या बात,
0: और ये शेर की उजाला मांगे का कोई लेके उछल रहा है बहरसू ऐसे, उजाला मांगे का कोई लेके उछल रहा है बहरसू ऐसे, हमारे शमसो कमर हैं हैरा, सितारे सहमे हुए पड़े हैं, सितारे सहमे हुए पड़े हैं, और जहाँ ने इमका हसीन करके तेरी नज़र पे यकीन करके,
1: वाह
0: जहाँ ने इमका हसीन करके तेरी नज़र पे यकीन करके, है दिल के मारों का हाल ऐसा, बेचारे सहमे हुए पड़े हैं, बेचारे सहमे हुए पड़े हैं, न जाने सहरा में ऐसा क्या था कि फूल चेहरा चमन से निकला।
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: न जाने सहरा में ऐसा क्या था कि फूल चेहरा चमन से निकला, सिसक रही हैं सभी पतंगे, गुब्बारे सहमे हुए पड़े हैं, गुब्बारे सहमे हुए पड़े हैं। और ये शेर की अजब है जहनों की गुम रही भी, अजब है जहनों की गुम रही भी, फजा में हरसू है तीरगी सी,
1: क्या बात,
0: फजा में हरसू है तीरगी सी, एक आम इंसान का जिक्र ही क्या, इदारे सहमे हुए पड़े हैं, एक आम इंसान का जिक्र ही क्या, इदारे सहमे हुए पड़े हैं। और आखिरी शेर के, खिरत नमूदे सबब है हमदम, जुनू पे ताड़ी जमूद पे हम,
1: क्या बात,
0: खिरत नमूदे सबब है हमदम, जुनू पे ताड़ी जमूद पे हम, और दिलों के शोले बुझे हुए हैं, शरारे सहमे हुए पड़े हैं। मक्ता देखेंगे, अता जो गाँव के खेत में थे, अता जो गाँव के खेत में थे, अता चमकते जो रेत में थे, सुना है शहरे शरार में अब वो पारे सहमे हुए पड़े हैं, सुना है शहरे शरार में अब वो पारे सहमे हुए पड़े हैं, किया है मौजों ने यूं किनारा, किनारे सहमे हुए पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बढ़िया।
1: ये थे जनाब अता हुसैन अंसारी साहब जी, अता आबदी आपके सामने अभी अपनी खूबसूरत गजल पेश कर रहे थे, और अब मैं मोहतरम प्रेम किरण से, मैं इन चार मिसरों के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी शर्त पे मंजूर उसकी कुर्बत थी, जो दोस्ती है अभी कल वही मोहब्बत थी, वो बात सोच कर मैं जिसको मुद्दतों जीता, बिछड़ते वक्त बताने की क्या ज़रूरत थी।
2: क्या बात,
1: जनाब मोहतरम प्रेम किरण साहब से गुजारिश है कि वो अपनी गज़ल से नवाजें।
2: गज़ल का मतलब जी है कि अभी तलक तो थी दोनों के दरमियां बातें,
1: वाह वाह, अभी तलक तो थी दोनों,
2: अभी तलक तो थी
1: दोनों के दरमियां,
2: दोनों के दरमियां बातें, जो हद से गुजरी तो पहुंची यहां वहां बातें,
1: वाह वाह,
0: जो हद से पहुंची,
2: अभी तलक तो थी दोनों के दरमियां बातें, जो हद से गुजरी तो पहुंची यहां वहां बातें। और ये देखिए कि हम एक छत के तले अजनबी से रहते हैं,
1: हम एक छत के तले अजनबी से रहते हैं
2: किसी से कोई भी करता है अब कहां
1: बात है, वाह,
2: कि किसी से कोई भी करता है अब कहां बातें।
0: बहुत खूब।
2: और ये शेर देखिए कि हम अपनी अपनी अना पर अरे रहे तो फिर,
0: हम अपनी अपनी अना पर अड़े रहे तो फिर
2: सुलझ न पाएंगी दोनों के दरमियां बातें,
0: क्या बात,
2: कि सुलझ न पाएंगी दोनों के दरमियां बातें, और हमें ही ढूंढना है मसालों का हल कोई,
1: हमें ही ढूंढ
2: हमें ही ढूंढना है।

0: सालों का हल कोई, चलो के तोड़ के करते हैं चुप्पियां बातें।
1: वाह वाह,
0: के चलो के तोड़ के करते हैं चुप्पियां बातें। और ये शेर बतौर खास के तमाम रिश्ते लहू के बिखरते जाते हैं,
1: तमाम
0: रिश्ते लहू के बिखरते जाते हैं, वहीं के हो गए सब बन गई जहां बातें। कि वहीं के हो गए सब बन गई जहां बातें। और ये शेर, शहर के बाद घरों में कोई नहीं मिलता,
2: शहर के बाद
0: घरों में कोई नहीं मिलता, दरों पे करती हैं दिन में उदासियां बातें। के दरों पे करती हैं दिन में उदासियां बातें। और ये आखिरी शेर के, नए जमाने के इंसान मशीन जैसे हैं।
2: क्या बात है
0: कि नए जमाने के इंसान
1: मशीन
0: जैसे हैं। हमारे वक्त की कुछ और थी मियां बातें।
1: वाह वाह,
0: हमारे वक्त की
1: कुछ
0: और थी मियां बातें। और ये शेर एक और गजल का मतलब देखिए कि नफरत ही रह गई है
2: जी,
0: मोहब्बत चली गई।
1: क्या बात है, नफरत ही रह गई
0: कि नफरत ही रह गई है,
1: मोहब्बत चली गई,
0: मोहब्बत चली गई, घर से हमारे रूठ के बरकत।
1: वाह वाह वाह,
0: के नफरत ही रह गई है, मोहब्बत चली गई, घर से हमारे रूठ के बरकत चली गई। और ये शेर के, हम भी खुशी के नाज उठाते कहाँ तलक, कि हम भी खुशी के नाज उठाते कहाँ तलक, अच्छा हुआ कि घर से मुसीबत के, अच्छा हुआ
1: कि
0: घर से मुसीबत चली गई। और ये शेर के, दो भाइयों के बीच की नफरत न पूछिए, कि दो भाइयों के बीच की
2: नफरत
0: न पूछिए, घर से निकल के बात अदालत चली।
1: वाह वाह वाह,
0: कि दो भाइयों के बीच की नफरत न पूछिए,
1: घर से निकल के बाद
0: अदालत चली गई।
1: बहुत अच्छा।
0: और ये शेर की, अच्छा था हम गरीब थे, इंसानियत तो थी।
2: क्या बात,
0: कि अच्छा था हम गरीब थे, इंसानियत तो थी, गुर्बत से जान छूटी शराफत चली।
2: क्या बात, क्या बात,
0: गुर्बत से जान छूटी
2: शराफत
0: चली गई। और ये शेर के, दौलत का ये गुरूर भी कितना अजीब है,
2: दौलत का
0: के दौलत का ये गुरूर भी कितना अजीब है, दस्तार बच गई तो रियासत चली। दस्तार बच गई तो रियासत चली गई। और ये इसमें एक गजल का शेर हो गया है कि खंजर चला न खून का दरिया बहा कहीं, खंजर चला न खून का दरिया बहा कोई, नजरों से कत्ल करके कयामत चली। नजरों से कत्ल करके कयामत चली गई। और ये आखिरी शेर की, आवाज अपने दिल की मैं सुनता भी किस तरह,
2: आवाज अपने
0: के आवाज अपने दिल की मैं सुनता भी किस तरह, दुनिया के शोरगुल में समा चली।
2: क्या बात,
0: के दुनिया के शोरगुल में
2: समा
0: चली।
1: वाह,
0: और क्या
2: क्या गर्व है जी।
0: अब एक रोमानी गजल,
1: बिल्कुल बिल्कुल, अर्थात
0: कि यहीं पास कोई नदी गा रही है,
2: यहीं पास कोई नदी गा रही है,
0: यहीं पास कोई नदी गा रही है, मोहब्बत की ठंडी हवा रही है।
1: क्या वाह,
2: बहुत खूबसूरत।
0: यहीं पास कोई नदी गा रही है,
1: मोहब्बत
0: की ठंडी हवा आ रही
1: है,
0: गजब की कशिश है सदाओं में उसकी, गजब की कशिश है सदाओं में उसकी, मुझे दूर मुझसे लिए जा रही
1: है,
2: मुझे दूर मुझसे लिए जा रही
0: है, गजब की कशिश है सदाओं में उसकी, मुझे दूर मुझसे लिए जा रही है। और मैं देखूं कि उसको सुनूं शब ढले तक,
2: मैं देखूं
0: कि उसको सुनूं शब ढले तक, सरापा गजल खुद गजल गा रही
1: है। क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: कि मैं देखूं
2: कि
0: उसको सुनूं शब ढले तक,
2: क्या बात,
0: सरापा गजल खुद गजल गा रही है। और सितारों की महफिल उसी से है रोशन,
2: सितारों
0: की महफिल
2: उसी
0: से है रोशन, वही नूर पर नूर बरसा रही है।
2: क्या बात, वही नूर से नूर,
0: सितारों की महफिल उसी से है रोशन, वही नूर पर नूर बरसा रही है। और मैं खुद को

0: संभालूं के बेताब दिल को,
1: मैं खुद को संभालूं
0: के बेताब दिल को, किसी ने कहा जिंदगी जा रही, मैं खुद को संभालूं के बेताब दिल को, किसी ने कहा जिंदगी जा रही है। और ये शेर आखिरी कि मोहब्बत में कैसी सियासत हुई है,
2: मोहब्बत
0: में कैसी सियासत हुई ये, कहीं की थी डोली कहीं जा रही है,
2: कहीं की थी डोली कहीं जा रही है
0: और यहीं पास कोई नदी गा रही है, मोहब्बत की ठंडी हवा आ रही है।
1: वाह, बहुत ही खूबसूरत शेर जनाब प्रेम किरण, आपने बहुत ही अच्छी और खूबसूरत गज़ल पेश की।
2: वाकई
1: वो कहते हैं कि उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से, और वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया जिसे तराशा था हमने भी एक ज़माने से।
0: क्या बात।
1: अब मैं खालिक हुसैन परदेसी चंद ए शार गज़ल के पेश कर रहा हूँ कि मोह

ए रमा। और ये शेर देखेंगे कि न गाजा है न लाली है न बिंदिया है न काजल है।

तुम्हारा बात करना रूठ जाना मुस्कुरा देना, तुम्हारा बात कर

0: अंधेरे। और ये मक्ता पेश है
1: अच्छा
0: कि हजारों गम है अपनी जिंदगी में फिर भी परदेसी,
1: वाह
0: हजारों गम है
1: अपनी
0: अपनी
1: जिंदगी में
0: जिंदगी में

0: तू है।
1: वाह,
0: और एक दूसरी गजल का मतलब ये पेश
1: अच्छा
0: कर रहा हूं
1: अच्छा
0: मैं जी, देखेंगे कि
1: इनायत हो।
0: हो इजाजत तो कदम अपना बढ़ाऊं मैं भी।

0: मैं भी
1: वाह,
0: और हजरात इसी गजल के साथ मैं अब इस महफिल सुखन का अख्तिताम करता हूँ। आज के इस महफिल सुखन में जो शोराए कराम हमारे दरमियान मौजूद थे उनमें थे जनाब मोहम्मद अता हुसैन अंसारी उर्फ अता आबदी साहब, दूसरे शायर जनाब प्रेम किरण साहब जो पटने से तशरीफ़ लाया, और मैं खाकसार खालिक हुसैन परदेसी जो आज की निज़ामत कर रहे थे, और इसके साथ ही महफिल सुखन का यह स्टूडियो मुशायरा अख्तिताम पज़ीर हुआ।
2: सामीन, जैसा कि मैंने आगाज़ जुमन में बताया था कि आज की तारीख़ एक बड़ा मकाम रखती है, क्योंकि एक बेबाक और हकीकत पसंद उर्दू अदब के सबसे मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो की पैदाइश भी आज की तारीख 11 मई 1912 में पंजाब के लुधियाना ज़िला में हुई। अपनी तालीम का आगाज़ उन्होंने अमृतसर से करते हुए मुंबई और लाहौर में फिल्मी व अदबी ज़िंदगी गुजारी। सामिन, सादत हसन मंटो पर हमारी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू रफ्तार देगी, लेकिन फ़िलहाल आइए एक गज़ल से अंजुमन को महकाते हैं। समाअत कीजिए खूबसूरत सी गज़ल।

0: अभी आप सुन रहे थे
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है जलीस शेरवानी ने। संगीत निर्देशन साजिद वाजिद की जोड़ी का। फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म दिव्य शक्ति से। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

उदित नारायण और के एस चित्रा को भी आप सुन रहे हैं फिल्म कोई मिल गया में। गीत के बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

और ये है इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म अग्निसाक्ष से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो की। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

अग्निसाक्षी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं समवेत स्वर में गाए इस देवी गीत के साथ।

विद्यापति गीत अभी आपने सुना। आज जिन कलाकारों को आपने सुना वो थे काशीनाथ झा किरण, सूर्य नारायण यादव और कुंज बिहारी मिश्र। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। आज के पहली सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं चंद देशभक्ति गीत।

दरभंगा से। कुछ ही पलों में हम आपको लेकर चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण।

0: सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirlinga temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first

0: of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
1: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है, इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं, सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है, वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है, उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं, या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से, उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
2: जी।
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं, और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को

0: नष्ट किया है अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: एंड the honorable prime minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings, and today the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first president of India, Dr. Rajendra Prasad. The honorable prime minister had at the beginning of this year had gone to Somnath temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the prime minister said recently in a newspaper article, the honorable prime minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियाँ आप तक पहुँच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है, साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई कर्तव्य दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
2: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.

विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्त

0: विष्णुरा विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं, या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है, ये तीन प्रकार के अहंकार हैं।

0: इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है। इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे आगे बढ़ाए मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy. Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal, Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है, सोमनाथ मंदिर हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT द Red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed! And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं इसमें, बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होके हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए, मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है।

0: नाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, you are absolutely right. And incidentally, Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shrestha Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहें और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालुगण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को इंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष रूप की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है। और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार

0: करने का एक संकल्प है, उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

0: by the Indian Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: किया जा रहा है सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिनमें कलश यात्रा शामिल है भजन संध्या है ओमकार मंत्र का जाप है सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान हैं अलग अलग आकृतियां बनाई हैं पुष्प वर्षा मंदिर पर की है माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं हमारे विशेषज्ञ आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है कैसे करना चाहिए
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी में किसी भी प्रकार की पूजा में चाहे वैष्णव रीति हो शैव रीति हो या शाक्त रीति हो
1: जी।
2: उपवास का महत्व होता ही है लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है हम भगवान में खो चुके होते हैं लिंक हो जाते हैं तो हम उस प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं उपवास एक दूसरा तत्व आता है व्रत व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है वो शरीर को साधने के चक्र की बात है उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में 5 घंटे 4 घंटे तो क्या होगा ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले जठरग्नि प्रबल ना हो तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना है कि हमें पूजा में मन ना लगे तो ये व्रत की प्रक्रिया है एक उपवास की प्रक्रिया है अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात ये हम लेके चले
1: जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है जिसका वो अंगी होगा यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूँ तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी
2: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया तो निकला कौन वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा वो निकला और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया जैसे प्राण अपान उदान समान व्यान नाग कूर्म क्रक्कल

0: देवदत्त, धनंजय और ग्यारहवीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये ग्यारह वायु है। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई। और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सह लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करें तो पंच प्राणों के बारे में, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये तीन प्राण। जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी,
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहाँ नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी,
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी,
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का

0: इतना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदचते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए। तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में। तो यहाँ आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है, जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस। सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया। तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयोवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें। भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्व सुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: And the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Bhai Patel, and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat, Sri Harsha Sanghvi, are also present. And the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the Lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a Kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे। और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं। और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य और अब स्वागत उद्बोधन यहाँ पर
2: विश्वना सौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मारा साथी सौ મંત્રીશ્રીઓ, સાંસદશ્રી, સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ શ્રી જેડી પરમાર, શ્રી પીકે લહેરી, શ્રી હર્ષવર્ધન નોહટિયા, શ્રી વિશદભાઈ મફતલાલ, આમંત્રિત સર્વે

0: this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव. माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक. प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में.
0: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: Jai Somnath. जय सोमनाथ. हर हर महादेव. गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है. महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ. साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं. ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम. आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं. जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है. ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है. साथियों,

अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल 2 आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है।

इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना, ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम

सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को

भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें

न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें

दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश पर प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्मा, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है।

इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।

0: जाना।
1: तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त अब पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
1: प्यार भरा
2: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है, तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीत्या संक्रमित होती है आगे चल के, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं पर हमें वो कभी ज्ञात हुई, यह ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? द वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू।
0: जी
1: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई, और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई। लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में 6वें दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है वहाँ की जो जनता भारत में स्थलांतरित या माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। नॉर्थ रीजन में गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है, महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी। लेकिन
0: अच्छा, लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
1: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं हैं उससे निगड़ित होती है, तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहाँ पे माइग्रेशन इज वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में।
0: डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप, कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है?
1: देखिए पूरी भारत दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो है जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं, और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल। तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं एक टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफ़ी गुना तो नीचे होता है पानी के। क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, इनका जो होते हैं इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा।
0: अच्छा,
1: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल रीत्या जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार नहीं होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में।
0: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने। हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे?
1: देखिए हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं, तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूँगा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं। कई

0: बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। वैसे ये बताइए, थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं?
1: देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है, या आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफ़ेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना, या हल्की सी कमज़ोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है। ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है, मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा। इसलिए इनका जो शरीर में अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफ़ी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियाँ आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं, पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
0: जो मेजर होता है,
1: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफ़ेद दिखने लगते हैं। माएँ देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से

0: संक्रमण ना दे, तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियाँ होती है बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियाँ, ये बढ़ने लगती है साइज में और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती है, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जिसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
0: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है, ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया।
1: बीटा,
0: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में जैसे कि शरीर में लोहों की कमी हो गई या किसी और चीज़ की कमी हो गई तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगना ही लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जब हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने की वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
1: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा?
0: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं, बच्चे में पीलिया दिखता है। जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है, कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
1: जैसे आपने ये भी बताया तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
0: अब देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रक्तरस संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
1: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से इसका रीज़न जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी, तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता जैसे कि आपने कहा हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है?
0: इसमें अब भी देखिए ये ज़रूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में ये बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को ऐसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के दो सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के दो जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक हाथ कैसे ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया और जो दो क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया तो बीमारी आती है, पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारियां के एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान, जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है

0: कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ़ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है तो बच्चा सफ़ेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज़्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज़ की तकलीफ होती हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूँ तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमज़ोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
0: देखिए धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का और गाना है पल पल दिल के पास।

0: डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य मुख्य घटक होते हैं वो क्या हैं?
1: देखिए, कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज

0: क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है, रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं या आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है, तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी लोह कम करने की दवाइयाँ ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारगर करती है। कुछ कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है इस चीज़ में पर इतनी कारगर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीप से ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें।
1: आपने बताया कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उसको होना जरूरी होता है?
0: ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन की स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का, तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन के फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें यानी ब्लड चढ़ाने कितना जरूरी होता है, तो शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका आकार मान भी बड़ा होता है, उसका वजन बड़ा होता है, तो पहले जो सिर्फ 1 यूनिट हर महीने में लगता था फिर हर महीने 2-2 यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में, तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना जरूरी हो जाता है। पर हीमोग्लोबिन का स्तर यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है।
1: थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है?
0: करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के आइडियल तरीके से यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं। इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है, और शरीर में लोह की मात्रा ज़्यादा रही रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो इन दवाइयों की जो मात्रा रखती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पर कितना खर्चा हो सकता है, तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, और 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पर करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है।
1: ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या परिवार के किसी सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है?
0: हर साल भारत में ही सिर्फ, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज्यादा अलग कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया तो भारत में कई सारे शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज़ है, बम्बई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है। थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है, और काफ़ी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना ज़रूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की जरूरत पड़ सकती है।
1: ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा।
0: एक दो दवाइयां इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। व्हीट ग्रास जिसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ

0: फायदा कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगी, पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली एक कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते होने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम लोग HbF कहते हैं, ये उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाजी रही है।
1: और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
0: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है भारत हमको जान से प्यारा है, ये मेरा एक और एक पसंदीदा सॉन्ग है जो भारत के विषय मेरा आदर हमेशा बढ़ाते रहता है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में बहुत ही इंस्पायर करने वाला रहा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और भी जो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, वो विकल्प क्या हैं आपकी नज़र में?
1: इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना जरूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी बीमारी हो या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है, तो वहाँ से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है, ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट, यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना जरूरी होता है। जिससे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं AB, AB या O, वैसे ही हमारे सफेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है, जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, और इसमें जान का खतरा 5 से 10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांस

0: फ्रंट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक आध ही होता है, एक आध लाख में, तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है। और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10 से 20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जो मैंने आपको बात बताई थी, जहां पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35 से 50 लाख के बीच में हो सकता है, और इसमें जान का खतरा 20 से 30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए, पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो, तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है।
1: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो?
0: यदि सक्सेसफुल हो गया तो।
1: लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
0: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है, इसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है तो जो लेके जाने वाला है उसे भी अपने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीजों के ऊपर है तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में लगता है, बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है, तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है कि देखिए, ब्लड संक्रमण तो हो गया है किस्सा। जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो उन बच्चों को HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे भी इन्फेक्शंस का संक्रमण हो गया है, उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है। 90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफी मात्रा में कम हुआ है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है, इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है, पर होती है वहां पे, तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों को पहले जो बीमारी उसमें और एक नई बीमारी लगी जिसका भी आपको इलाज करवाना पड़ता है। ब्लड अरेंज करना, ब्लड के लिए जो फिल्टर लगता है उसको अरेंज करना, प्लस जो दवाइयां लगती है जो लोहों को कम करने के लिए जरूरी होती है। जो शुरुआती में दवाई थी वो सिर्फ इंजेक्शन के रूप में ही अवेलेबल थी, तो बच्चों को एक इंजेक्शन का पंप कंटिन्यूअसली लगा के रखना पड़ता था। अब बच्चा तो इंजेक्शन पूरे दिन भर लगाते रहे, ये तो पूरा आप तो नहीं कर सकते हैं, और ये इंजेक्शंस महंगे भी होते थे काफी। अब टैबलेट्स का विकल्प आ चुका है, जो पहले वाले टैबलेट से काफी सारे साइड इफेक्ट्स के साथ है, नई टैबलेट्स आए उनके साइड इफेक्ट्स कम है पर कीमत ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं होती हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में, और भी जो बच्चों के हितकारी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, तो क्या इस बीमारी के इलाज के लिए किसी NGO से, किसी अन्य संस्था से मदद प्राप्त हो सकती है या नहीं है?
0: जरूर मदद प्राप्त हो सकती है, लेकिन देखिए, एक जानना जरूरी है कि ये जो NGOs है और जितना पेशेंट्स का बर्डन है, अगर इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। फिर भी हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है, जैसे कि एक है थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है अगेंस्ट थैलेसीमिया करके, एक है एक इंडियन थैलेसीमिक सोसाइटी है, और हर जगह पे रेड क्रॉस से और अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। तो हर शहर में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म करी गई है। सबसे जो पहले फॉर्म हुई थी वो बंबई के KEM अस्पताल में और JJ अस्पताल में फॉर्म हुई थी, तो वहां पे थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फंडिंग होता है। दूसरी है जो एम्स दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, और हर जगह में जैसे रायपुर है, चेन्नई है, हर जगह ने अपने अपने एक थैलेसीमिया की सोसाइटी बनाई हुई है।
1: माँ बाप अपने मरीज बच्चे के लिए लोकल किसी छोटे टाउन नगर कस्बे में ये मदद चाहे तो क्या करना चाहिए?
0: जब हम लोग एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर करके बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। यह जो सिस्टम्स है जो हम लोग बनाए, जो मुख्य शहरों में यानी फर्स्ट टायर या सेकंड टायर सिटीज में सिर्फ देखी जाती है, वो हर छोटे मोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध कराई दे सकती है, यानी गवर्नमेंट में उपलब्ध कराई दे सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि सेफ ब्लड मिलना, और दूसरा होता है कि जो ब्लड के लिए फिल्टर्स लगते हैं ये कम कीमत पे अवेलेबल करवा देना, और तीसरा होता है जो लोह कम करने की दवाइयां होती है ये भी कम कीमत पे उपलब्ध करवा देना। अगर पेशेंट अपने निगड़ित थैलेसीमिया सोसाइटी के अंडर अगर रजिस्टर हो जाता है तो इन सब चीजों में उनको मदद मिल सकती है।
1: अच्छा, जहाँ तक आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो बात को तवज्जो देते होंगे, मरीज़ आपके पास भी आते होंगे, तो जो आजकल एक प्रचलन सा चल पड़ा है जेनेरिक दवाइयाँ, जो कि ब्रांडेड दवाइयों के मुताबिक ही लेकिन कम कीमत में होती है, वो भी उपलब्ध है?
0: दुर्दय की ये बात है कि इस बीमारी में जो दवाइयाँ चल रही है इसमें ज़्यादा जेनेरिक्स आए नहीं है। प्रॉब्लम एक अपनी तरह के साथ है, फार्मा कंपनीज भी जो होते हैं ना, जेनेरिक्स बनाते हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा फायदा दिखता है। ये जो बीमारी

0: है इसमें बहुत सारे मरीज जो होते हैं इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बीमारी का जैसे स्वरूप देखा जो लाइफ लॉन्ग होता है, तो बहुत बार ये बच्चे अपने इस बीमारी की वजह से दूसरे या तीसरे शतक के आगे जाते ही नहीं है, दशक के आगे।
1: हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर कोई कंपनी कोई पहल कर दे।
0: जरूर, मैं भी यही चाहूंगा।
1: फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का एक कोई गाना यहाँ पर जरूर सुनवाएं।
0: कि वे तो मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया में जो है हर एक की लड़ाई है, हर एक ने अपनी अपनी लड़नी है, आगे आगे धीरे धीरे तो चलेंगे। एकला चलो रे करके अमिताभ बच्चन की आवाज में जो गाना है कहानी फिल्म से, मैं सुनना चाहूंगा।
2: जो दी

0: गाना बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही प्रेरक आपने सुनवाया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाव, सावधानियां और रोकथाम?
1: देखिए, कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी होता है
0: जी।
1: मेन ये चीज़ सीखना ज़रूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो

0: मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहां पे शालेय एजुकेशन देखे, इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होके उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया। तो दूसरी एक स्ट्रेटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के अभी शादी करेंगे और बच्चे वगैरह होंगे, तो उनको एजुकेशन देना। ये भी मतलब इसमें जो होता है उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हम लोग जैसे कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है।
1: जी जी।
0: अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने बहुत सारे लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई, तो भारत एक ऐसी जगह है जहां पे लड़की को कुछ भी हो तो शादी होना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है, जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो आज सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है
1: जी।
0: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में?
0: देखिए, कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज के तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेड क्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशन पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है, जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपल्सरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपल्सरी कही गई, तो उसके वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया लिया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं,
1: उसकी
0: तो
1: इंडिविजुअलिटी को,
0: इंडिविजुअलिटी जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर, वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूं और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो, समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ ज़रूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
0: देखिए, अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाया जा रहा था, एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है, रोग पिक्चर का मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मैरिटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा,
0: वो
1: जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा, अगर समझो आधी बीमारी है एक में नहीं है तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है, दोनों को नहीं है तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है, तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में। और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की ये है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। यह हमें जानना जरूरी है।

0: कि देखिए, जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो, तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्डिंग टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार ये टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
1: और डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
0: देखिए, कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज़्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने, अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
1: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है। और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
0: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है, क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है। और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का, दीवानी मस्तानी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी दूसरी यानी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार, जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेहका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
2: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन सर।
3: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
4: यस सर।
3: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
4: Yes sir, we have seen.
5: I have seen sir.
6: I like bicycle sir.
7: I love it.
3: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks.

कार्यक्रम युववाणी के आज के अंक में आप सुन रहे हैं तरुण कुसुम। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम की शुरुआत में हम सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
6: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
5: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
6: वो तो ठीक है साहब,
5: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
6: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
5: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं।

0: और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
1: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
0: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
2: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया

0: अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
2: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
3: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
4: यस सर।
2: नाथु सिंह निशाना साधो।
3: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
3: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
4: जी।
2: फायर।
3: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
3: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो जो मेरा लौटने का समय

0: नजदीक आता गया त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: कार्यक्रम तरुण कुसुम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे NCERT उमंग। उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब आपको सुनवाते हैं मैथिली सुगम संगीत।

प्रेरणा कुमारी के गाए इस मैथिली सुगम संगीत के साथ ही कार्यक्रम तरुण कुसुम का समय अब समाप्त हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम के इस अंक से दीजिए आज्ञा, कल फिर मुलाकात होगी।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब पेश है फिल्म संगीत।

किस्मत फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और उदित नारायण के आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने।

लता मंगेशकर और बाबला मेहरा को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चांदनी में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था शिव हरि ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सपने साजन के में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सपने साजन के में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान

0: ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। AFC अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

अब श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। विद्यापति गीतों का आनंद आप लेंगे अब से कुछ देर बाद यानी संध्या 6:10 से। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर हम आपको सुनवाएंगे मैथिली संवाद।

सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण समय होगा संध्या 6:30 से। खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00।

शाम 7:52 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। हमारा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनेंगे आज रात 8:15 पर।

पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है विद्यापति गीत।

0: विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना राम कुमार मल्लिक, अरविंद कुमार झा और कुंज बिहारी मिश्र को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। केंद्र सरकार विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के देशभर में लागू करबाक अधिसूचना जारी कऽ देलक अछि। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ई कानून 1 जुलाई 2026 सँ सभ राज्य आ केंद्र शासित प्रदेश में लागू होयत। ई अधिनियम सँ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारक मौका के बढ़ायब, आजीविकाक साधन के मजबूत करब और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन देनाई अछि। एहि के लागू भेला सँ ग्रामीण विकास योजना सभ के नव गति भेटत और गाम सभ में स्थायी रोजगार सृजन के बढ़ावा भेटत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आई पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम सँ सहयोग पोर्टल शुरू कयलनि। लोकसभक शिकायत के शीघ्र ही निष्पादन लेल ई शुरू कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री एहि मौका पर जनौलनि जे पंचायत स्तर पर मास में 2 दिन शिविर लगाकर लोकसभक समस्याक समाधान कयल जायत। एकर मॉनिटरिंग जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक करता। सहयोग पोर्टल लोकसभक शिकायत के पारदर्शी रूप सँ निपटेबाक लेल तैयार कयल गेल अछि। ई पोर्टल पर एकीकृत ऑनलाइन प्रणालीक माध्यम सँ शिकायत दर्ज करबाक स्थितिक जनतब लेब आ रिमाइंडर पठायब और प्रतिक्रिया देबय में आसान होयत। ई पोर्टल पर परिवाद दर्ज करबाक तिथि सँ 30 दिन में निष्पादन कऽ आवेदक के लिखित सूचना देल जायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आई पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथक लोकार्पण कयलनि। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना में बनल ई पथ सँ स्थानीय लोक सभ के ट्रैफिक जाम सँ राहत भेटत। एहि मौका पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ विजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ राज्यसभा सांसद नितिन नवीन सेहो छलाह। पश्चिम चंपारण जिलाक रामनगरक खटौरी गाम में पूर्वोत्तर भारतक पहिल हाईटेक हेचरी प्लांट शुरू भेल अछि। केंद्रीय खनन आ कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ई प्लांटक उद्घाटन कयलनि। एहि मौका पर ओ जनौलनि जे एहि सँ कृषि उद्यमिताक क्षेत्र में नव क्रांति आओत और युवा सभ के रोजगारक नव मौका भेटत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्वक मौका पर पहिल ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा कयलनि।

0: सोमनाथ मंदिरक शिखर पर कुम्भाभिषेक सेहो कयलनि। मंदिरक इतिहास में पहिल बेर मंदिरक शिखर पर 11 तीर्थ स्थल सँ लाओल गेल पवित्र जल सँ जलाभिषेक कयल गेल। एहि बीच वायुसेना एयर शो कयलक, जाहि मे सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम सोमनाथक ऊपर मनमोहक कर्तव्य देखौलक और हेलीकॉप्टर सँ पुष्प वर्षा कयल गेल। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिरक पुनर्निर्माणक 75 बरख पूरा होयबाक मौका पर मनाओल गेल। एहि मौका पर राज्य कतेको शिवालय मे विशेष पूजा अर्चना कयल गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आह्वान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लोक सभ सँ पेट्रोलियम उत्पाद पर आयात पर खर्च होयवला विदेशी मुद्रा बचेबाक संकल्प लेबाक लेल जनौलनि अछि। श्री सिंह जनौलनि जे एहि लेल लोक सभ कारपूल कऽ सकैत छथि, गैस चूल्हाक बदला इंडक्शन सँ काज लेल जा सकैत अछि। एम्हर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जनौलनि अछि जे वैश्विक ऊर्जा संकटक बीच लोक सभ के पेट्रोलियम उत्पादक काज मे अनुशासन बरतबाक चाही। भाजपा नेता सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा आई बिहार विधान परिषद सदस्यक रूप में शपथ लेलनि। विधान परिषदक सभापति अवधेश नारायण सिंह हुनका पदक शपथ दियौलनि। पूर्व मंत्री मंगल पांडेक इस्तीफा सँ खाली भेल सीट पर भेल उपचुनाव में ओ एनडीएक उम्मीदवार छलाह। हुनका निर्विरोध सदनक सदस्य निर्वाचित कयल गेल छल। खनन आ भूतत्व विभागक मंत्री प्रमोद कुमार आई पदभार सम्हारि लेलनि। आकाशवाणी समाचार सँ गपशप मे ओ जनौलनि जे अवैध खनन मे लागल लोक सभ पर कड़गर कार्रवाई कयल जायत। पश्चिमी विक्षोभक असरि कम भेला सँ प्रदेश मे बारिशक स्थिति मे कमी आयल अछि। मौसम विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार पछिला 24 घंटाक बीच किछु ठाम हल्लुक वर्षा भेल अछि। मौसम पूर्वानुमान मे जनाओल गेल अछि जे काल्हि राज्यक उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र मे किछु ठाम हल्लुक वर्षा भऽ सकैत अछि। ओतहि अगला 48 घंटाक बीच अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ि सकैत अछि। पूर्वी चंपारण जिलाक जितना थानाक अगरवा गाम सँ पुलिस और एसएसबीक टीम 2 किलो 700 ग्राम चरसक संग एक तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि। मुजफ्फरपुर जिलाक मुसहरी थानाक नरौली बालगृह सँ 10 बच्चा के लापता होयबाक मामला सोझा आयल अछि। जिला प्रशासन मामलाक जांच कऽ रहल अछि। दरभंगा जिलाक बहेरी बाजारक एक स्टूडियो में पुलिस छापा मारि कऽ फर्जी आधार कार्ड बनाबय वला गिरोहक खुलासा कयलक अछि। मौका सँ 2 लोक के गिरफ्तार सेहो कयल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: गाम घर सुननिहार सुशी श्रोता लोकन के विजय कुमार सिन्हा के नमस्कार। श्रोतागण, आई गाम घर के दलान पर उगना भाई बैसल छथि, तो गोर लगे छे उगना भाई?
1: खूब प्रसन्न रहू विजय भाई। विजय भाई, आई सोम दिन अछि आ आजुक दिन हमरा लोकन स्नेही बुजुर्ग श्रोता भाई बहन लोकनिक लेल लऽ कऽ अबैत छियनि साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा सँ। एहि कार्यक्रम अंतर्गत आइ एकटा बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित हमरा लोकन भेंट वार्ता सुनब, संगे गीत नादक आनंद लेब, एकटा प्रायोजित कार्यक्रम सुनब बुनियाद, एकर संगे गपशप एहि सबसँ पहिने किछु कऽ लै छी। विजय भाई, हमरा लोकनि जानिते छी जे बुजुर्ग लोकनि जे होइत छथि, वृद्ध लोकनि जे होइत छथि, ओ अपन जीवनमे कतेको प्रकारक उतार चढ़ाव देखने रहैत छथि आ एहिसँ हुनका लोकनिके बड़ बेसी अनुभव रहैत छनि।

0: छथिन तऽ एहि प्रसङ्गमे अहाँके की विचार? हिनका लोकनिके ध्यान देबाक चाही,
1: हर आदमीके सर ध्यान देबाक चाही, नहि तऽ कितनो कमेला पर शांति नहि, लोक व्यस्त रहल, कोइ देखऽ वाला नहि, एहि पर हर आदमीके ध्यान दियऽके चाही।
0: आ तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करबाक लेल सबसँ तऽ पहिने अपन दिनचर्या पर ध्यान देबाक, अहाँ की जनतब देबै?
1: हाँ, एहि पर हम जे है से ई कहऽ ला चाहै छी कि हर आदमीके अपना सम्पत्तिके सज्जन करऽके चाही, सम्पत्तिके जे है से परहेज यदि नहि करै तऽ बादमे बहुत दिक्कत हेतै, सएह हम कहला चाहै छी।
0: अपन जीवन शैली पर सेहो, दिनचर्या पर सेहो ध्यान देबाक चाही।
1: जी जी जी जी जी जी।
0: अपन आहार पर सेहो ध्यान, कखन उठै छी आ कखन सुतै छी?
1: सवेरे जे है से हम 6 बजे उठै छी आ उठलाके बादमे जे है से अपना कार्यमे लागि गेली, रातिमे जे 10 बजेमे सबकिछु दोकान बढ़ेलाके बादमे आराम कैली, ओहिमे कोइ संदेह नहि, स्वस्थ रहली, काजमे लगल रहली हम, लेकिन ओकर आगे कोइ देखऽ वाला नहि।
0: एकर संगे अहाँके जे आस्था अछि भगवानके प्रति, ओ जीवनमे आगू बढ़ैमे बड़ काज दैत अछि, जे एहि उम्रमे पूजा पाठ सेहो केलहुँ।
1: जी, पूजा पाठ एकदम अति आवश्यक छै, आध्यात्मिक जीवनमे ओही से सुख अपना मिलल, नहि तऽ कोइ दोसर रास्ता नहि, ओहि भगवानेके पूजामे लागि कऽ जे है से अपना शान्तिके अनुभव भेल, दूसरा कोनो रास्ता नहि।
0: एकर संगे बुजुर्ग लोकनिके अपन स्वास्थ्य पर सेहो ध्यान देबाक,
1: एकदम ध्यान, खान पान पर एकदम ध्यान देबाक चाही।
0: अहूँ एकदम स्वस्थ छी।
1: जी,
0: तऽ कोन तरहक अहाँ आहार लै छी, जेना एखन गर्मीके मास एलै, तऽ एहिमे बुजुर्ग लोकनिके कोन तरहक आहार लेबाक?
1: शाकाहारी भोजन बहुत जरूरी छै सर, सलाद, हरा सब्जी, ई जे है से आहार लेली, खाना खैली ठंडा जे है से, मतलब कि सब्जी सब, साग सब्जी है ना, फल फूल खैली, स्वस्थ रहली, खीरा ककड़ी तरबूज, जी जी,
0: एहि सबके सेवन।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ।
0: एकर संगे अहाँ भोरमे किछु व्यायाम सेहो करै छी?
1: हाँ, भोरमे व्यायाम, हाँ हाँ, भोरमे व्यायाम जरूरी छै सर, करीब आधा घंटा 20 मिनट घुमलहुँ खुलल जगहमे, घुमलाके बाद आके जे है कुल्ला आचमन कऽ कऽ चाय ताय पीली, काजमे लग गेली।
0: कहबाक तात्पर्य यऽ जे बुजुर्गा अवस्थामे तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करबाक लेल सबसँ पहिने अपना पर संयम आ धैर्य रखबाक चाही,
1: एकदम जरूरी छै,
0: और क्रोध पर सेहो नियंत्रण हेबाक चाही। अवस्थामे देह कमजोर होइत अछि, छोट छोट गप पर सेहो तनाव भऽ जाइत, तऽ एहि सबसँ पहिने जे स्वस्थ जीवन आ तनाव मुक्त रहबाक मूल कारण अछि।
1: जी,
0: तऽ गणेश यादव जी, अहाँ बड़ नीक जकाँ बुजुर्ग स्नेही श्रोता भाइ बहिन लोकनिके ई जनतब देलियनि जे तनाव मुक्त कोना रहल जाय।
2: उगना भाई, एखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ बाय ध्वन्यांकन पर आधारित ई भेंटवार्ता, तनाव मुक्त जीवन आवश्यक, भेंटवार्ताकार छला गणेश यादव आ भेंटकर्ता छला शंकर कुमार चौधरी, तऽ हिनका हमसब बहुत रास धन्यवाद दै छियनि। आब हमरा लोकनि किछु गीत नादक आनंद ली, सुनी हमरा लोकनि एक विवाह गीत रागिनी कुमारीके स्वरमे, सुनल।

0: ओना भाई एखन हमरा लोकनि रागिनी कुमारीके स्वरमे विवाह गीत सुनि रहल छलहुँ।
1: आ विजय भाइ, आब हमरा लोकनि सुनै छी प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, तऽ सुनल जाय।
0: सुनल जाय।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: बुनियाद।
1: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। बुनियाद कार्यक्रम का समय हो गया है और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ इस सप्ताह का बुनियाद लेकर। वर्षों से ये कार्यक्रम आपके लिए राजेश लेकर आ रहा है और बातें करते हैं इसमें युवाओं, आपसे, आपके माता पिता से, छोटे छोटे जो भाई बहन हैं वो भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं और उन्हें जीवन में क्या करना है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दो तीन बातें मुख्य रूप से कहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, टेक्निकल पढ़ाई के किसी भी कोर्स को चुनिए अपनी मर्जी से और फिर ध्यान लगाकर पढ़िए और पढ़ते पढ़ते ही संभवतः आपको रोजगार मिल जाए या पास आउट होने के बाद, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। और दूसरी बहुत बड़ी बात कि अगर किसी नेशनल कंपटीशन को आपने कम्पीट नहीं किया है तो बाहर, बिहार से बाहर, झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और बिहार में, झारखंड में बहुत कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे

0: कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है। और आपको बताएं कि नेशनल कंपटीशन से भी अगर जो आप कम्पीट करते हैं तो बिहार में भी उसके कॉलेजेस हैं। मसलन अगर आपने क्लैट को क्रैक किया तो चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ जो ऑटोनोमस है वो है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ 13-14 टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें मेडिकल से लेकर पैरामेडिकल, नर्सिंग या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, फार्मेसी की बात करें, कुछ भी करें, यहाँ पढ़ाई होती है। बायोलॉजी से अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, इसके अलावे अगर जो आप लॉ करना चाहें 5 ईयर या फिर 3 ईयर, या जर्नलिज्म करना चाहें, या मैनेजमेंट करना चाहें, या अगर आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, किताबों से शौक है, तो आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्कोप हैं। नोट कीजिए वहां का नंबर, नंबर है 9431899002, 9431899002। टोल फ्री नंबर है 1800121001, और एक वेबसाइट है www.gnsu.ac.in। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है बीएड स्पेशल एजुकेशन। हाँ, जैसे बीएड होता है ना, बीएड होता है उसी तरीके से, उससे भी ऊपर का कोर्स है बीएड स्पेशल एजुकेशन। 9431899002 पर पता कर लें। जी हाँ, इसके अलावा ढेर सारे कोर्सेज हैं, जो मर्जी आए चुन ले। आज मैंने किसी प्रोफेसर को नहीं बुलाया, डीन को नहीं बुलाया, या फिर रजिस्ट्रार साहब को नहीं बुलाया, या वाइस चांसलर को भी हमने गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नहीं बुलाया। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट, जिसमें पूनम है, सिल्की है, यशवी है, आराधना शाही है, जागृति है, या फिर पलक है, बहुत सारे लोग हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपना करियर क्यों चुना है, क्या इन्हें लगता है कि इसकी पढ़ाई कर लें तो रोजगार मिल जाएगा, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का जो कॉलेजेस है जमुआर, सासाराम, रोहतास, बिहार में, उसमें क्या क्या है, क्या ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी इनके लिए फायदेमंद है, और आपके लिए ये यूनिवर्सिटी कैसी है। इसके लिए सबसे पहले बुलाते हैं पूनम गुप्ता आपको, आ जाइए, माइक्रोफोन आपका और सारे लिसनर्स आपके हैं।
1: नमस्कार, मैं पूनम गुप्ता बीबीए की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैंने इसलिए बीबीए चूज किया क्योंकि मुझे मैनेजमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने जब मैंने अपने घर से पास में जब मैंने यूनिवर्सिटी के लिए देखने के लिए ढूंढा तो मुझे पता चला कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर मैनेजमेंट। तो जब मैंने यहाँ पे आया पढ़ा तो मेरे लिए फुल्ली सैटिस्फाइड थे, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई मिले क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट, फैकल्टी इतने सपोर्टिव है। अगर आप कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या फिर कुछ है तो आप सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ के फैकल्टी सारे स्ट्रीम्स को फुल्ली अच्छे से ट्रीट करके अच्छे से समझाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनको प्रॉब्लम होता है कि वो आर्ट्स से ह्यूमैनिटी से हैं तो उन्हें अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो या आगे फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हो, उन्हें काफ़ी अच्छा स्कोप और काफ़ी अच्छा गाइड किया जाता है। ऑल दो इसके साथ साथ उन्हें स्किल्स का भी आगे अपॉर्चुनिटी है और वो स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हैं। हमारी और ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे जाती है उन्हें और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और जिन्हें भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो DRCC से भी अपना यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं मैनेजमेंट करना तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बेस्ट है।
0: वाह, क्या बात है पूनम जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। सिल्की, आप क्या कहना चाहिएगा?
2: नमस्कार, मैं सिल्की गुप्ता गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी की MBA की स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ स्टडी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ स्टडी पे ही नहीं बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ों को मिलाकर एक ओवरऑल अच्छे पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। मैनेजमेंट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि हमें कॉर्पोरेट

0: स्पिरिट में इस चीजों पे काम करना होता है। हमारे यहाँ सिर्फ स्टडी ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा इन्वायरमेंट के साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन कराया जाता है, और हमारे यहाँ हर चीज की फैसिलिटीज अच्छी होती है। हमारे यहाँ हर स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान दिया जाता है, हर चीज़ को सही करने के लिए मेंटर मेंटीज फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, ताकि किसी भी बच्चे को अपना सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। हम तो यहाँ आकर अपना करियर बना लिए, आप कब आ रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। थैंक यू।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश, और हमारा नंबर नोट कर लीजिए जहाँ आप जानकारियाँ ले सकते हैं, 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री है 1800121051, और www.gnsu.ac.in, जी हाँ ये वेबसाइट का पता है। इसके अलावे आइए बातें सुनते हैं यशवी से, जो बीबीए की स्टूडेंट है।
2: नमस्कार, मैं यशवी हूँ। मैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की बीबीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी इसलिए चूज किया है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे डाउट हो तो मेंटर मेंटी की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे एनवायरमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है हमारे पढ़ने के लिए, इंटर्नशिप के लिए बाहर भेजा जाता है, हॉस्टल्स की सुविधा भी है। पैसे की बात है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी यहाँ दी जाती है। और आप अभी तक घर पे बैठे हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए।
1: बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया यशवी कि आपने क्यों बीबीए लिया और यहाँ क्या मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराधना साही है हमारे साथ। आराधना, अपनी बात बताइए सुनने वालों को, करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।
3: नमस्कार, प्रणाम, मैं आराधना साही गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर की छात्र हूँ। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था क्योंकि मुझे एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए था जहाँ पे हम लोगों को बस थ्योरेटिकल ही नहीं प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले। एंड जब मैं यहाँ पे आई अपना एजुकेशन गेन करने के लिए, तब मुझे यहाँ पे ये फील हुआ कि हमारे जो फैकल्टी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, यहाँ पे बस थ्योरेटिकल नॉलेज पे कभी फोकस नहीं करते हैं। ये लोग हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अभी आपने जस्ट 12 पास आउट किया है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, अच्छे से हम लोग ग्रो करें, एंड अगर आप एक लड़की हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा घर दूर है, मुझे हॉस्टल चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ और यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है हॉस्टल में। एंड यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कैसे एजुकेशन गेन करेंगे, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको लोन मिलेगा एंड आप उसके हेल्प से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आप जब यहाँ पे आओगे, आपको हमारा यूनिवर्सिटी मेक श्योर करता है कि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो और आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने करियर में ग्रो करो। ये कॉलेज मुझे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करवाया है, एंड मैं आज जहाँ भी हूँ एक अच्छे प्लेस पे हूँ एंड अपने कॉलेज के वजह से हूँ। तो मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, अगर आप अच्छे अपने करियर में अच्छा करना चाहते हो तो आप जरूर आइए हमारे कॉलेज में। थैंक यू सो मच।
1: आराधना शाही ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, बुनियाद कार्यक्रम चल रहा है और अब बारी है जागृति की। पलक, इंतजार कीजिए आप, जागृति बीबीए की स्टूडेंट है। जागृति, क्या कहना चाहिएगा आप?
4: नमस्कार, मैं जागृति कुमारी बोल रही हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड सेमेस्टर गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर पे आया तो मैंने जाना कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, यहाँ के टीचर्स बहुत फ्रेंडली थे, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली थे। ये हमारी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट मिला। यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी है, जो स्टूडेंट्स का ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो भी अपना ग्रो कर सकते

0: सकते हैं, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है स्किल डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन एंड अदर थिंग, जो फैकल्टीज की भी यहाँ पे बहुत सुविधा है, यहाँ पे हर चीज की सुविधा है जिसके द्वारा सब स्टूडेंट आगे से आगे बढ़ सके, प्लेसमेंट के थ्रू आगे बढ़ सके और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। साथियों, हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा था, युवाओं ध्यान दीजिएगा कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय लगातार ऐसे कोर्सेज की खोज करता रहता है जिसमें आपके लिए रोजगार की असीम संभावनाएं हों। टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसा कि हमने बताया था कि बीएड तो था ही, बीएड स्पेशल एजुकेशन लेके आया था, और अब तीन कोर्सेज और नए आए हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। आने वाले एपिसोड्स में हम उसके बारे में जानकारी देंगे। आज लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आने वाले सोमवार को मिस नहीं करना है, जिसमें एक कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी,

0: आए साथियों, हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा था, युवाओं ध्यान दीजिएगा कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय लगातार ऐसे कोर्सेज की खोज करता रहता है जिसमें आपके लिए रोजगार की असीम संभावनाएं हो। टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसा कि हमने बताया था कि बीएड तो था ही, बीएड स्पेशल एजुकेशन लेके आया था, और अब तीन कोर्सेज और नए आए हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। आने वाले एपिसोड्स में हम उसके बारे में जानकारी देंगे। आज लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आने वाले सोमवार को मिस नहीं करना है, जिसमें एक कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स आपके लिए है, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। और तीसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, जी हाँ, यही कोर्स है। ये तीन नए कोर्स अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें सीटों की संख्या बहुत कम है, करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगले एपिसोड में यानी आने वाले सोमवार में एक एक करके हम इसके विषय में जानकारी देंगे, और फिर आपके कोई सवाल होंगे तो फिर दोबारा भी बताएंगे। तो बस ये हमारा उद्देश्य है कि आप आगे बढ़ें और बढ़ते चले जाएं। अब आपकी बारी है, इसके लिए आप डायल कर सकते हैं 9431899002, 9431899002, और टोल फ्री नंबर है 1800120051, 1800120051, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। थैंक यू कहना चाहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास को कि जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम लेकर आने को आपके राजेश को मौका दिया और जानकारियां आप तक पहुंची। तो चलते हैं, अगले सोमवार को फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: विजय भाई, एखन हमरा लोकन सुनलो, ई प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद आ अहिक संग आब आजुक अनुभव के चश्मा से कार्यक्रमक बेर संपन्न भ रहल अछि। तो आप खेती गृहस्थी में स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के स्वागत करै छियन।
3: हाँ उगना भाई, देखियो हमरा लोकन खेती गृहस्थी कार्यक्रम में प्रवेश कऽ गेल छी, तो किसान भाई लोकन के हमरा लोकन जानकारी देबै दुधारू पशु के देखभाल कोना करी, तो अइ विषय पर गप करब। तो उगना भाई देखू, जे दुधारू पशु के सही देखभाल से दूध उत्पादन बढ़त और ओ स्वस्थ रहत। दुधारू पशु के संतुलित आहार में जना हरा हरियर चारा भेल, सूखल भुस्सा दाना इत्यादि, एकरा साफ पानी आ रहबाक लेल हवादार आ साफ जगह प्रदान करी। गर्मी में ओकरा लू से बचेबाक लेल छाहर वा ठंडा पानक प्रयोग करी। नियमित टीकाकरण आ पशु चिकित्सक से जांच केनाय बड़ आवश्यक अछि। दुधारू पशु के देखभाल के प्रमुख उपाय सब अछि जेना आहार आ पोषण। तो प्रतिदिन एक वयस्क पशु के 4 से 6 किलोग्राम सूखल चारा आ 15 से 20 किलोग्राम हरियर चारा देबाक चाही। फलदार आ गैर फलदार चारा मिलाकर एकरा खुआबी। आ दूध उत्पादनक अनुसार दाना मिश्रण हर 2 से 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना दी। एकरा शरीरक मजबूतीक लेल मिनरल मिक्सचर अवश्य दी। एकरा बुझलिए उगना भाई, आवास आ सफाई। तो उगना भाई दुधारू पशु के पशुशाला जकरा बथान कहै छी, ओ सुखल साफ आ हवादार होना चाहिए जाहिसँ पशु के आराम मिले। गोबर आ मूत्र के नियमित सफाई करी जाहिसँ संक्रमण नहि पसरै।
2: विजय भाई, एखनुक जे बेर अछि गर्मी के मास, एहि मास में पशु के जे किछु संक्रामक बीमारी होइत अछि ताहिसँ बचेबाक लेल टीकाकरण सेहो करा देबाक चाही। आ गर्मी में जे

0: एकरा आहार दैत छी, पानि दैत छी पीबै लए, ई सब जै पात्रमे दै छी, कहबाक जे बर्तनमे जाहिमे दै छी अथवा नादिमे दै छी, तऽ ओकरा नियमित रूपसँ एखनुक बेरमे साफ सुथरा करबाक चाही। प्रायः एखन एहन देखल जाइत अछि जे किसान भाइ बहिन लोकनि जल्दीमे हड़बड़ीमे से नादिके नित्य प्रति नहि साफ कऽ पबै छथि आ ओहीमे फेरसँ ओकरा से चारा दाना बोझि देलखिन, तऽ ई नहि हेबाक चाही। एखनुक बेरमे नियमित रूपसँ स्वच्छता पर ध्यान देबाक चाही आ तकरा पालन सेहो करबाक चाही।
1: नहि गप कहलिए उगना भाई, देखियौ उगना भाई, जे गर्मीक दिनमे दुधारू पशुके लू लगनाय एकटा सामान्य समस्या अछि, जकरा कारण पशुके बोखार, पेट खराब, सर्दी, जुकाम, भूख नहि लगनाय जेना परेशानीक सामना करऽ पड़ैत अछि। किछु घरेलू उपाय अपना कऽ पशुके काफ़ी हद तक राहत देल जा सकैत अछि, जेना पानिक व्यवस्था। तऽ दुधारू पशुके अगुना भाइ हर समय साफ आ ताज़ा पानि उपलब्ध कराबी, खास कऽ गर्मीमे, आ गर्मीमे एकरा विशेष देखभाल करी। पशुपर दिनमे 3-4 बेर ठंडा पानि डाली कि नहि,
0: एहि दुआरे जे पशुके गर्मीके से नहि होय ओकरा एहसास, गर्मी ओकरा बुझबामे बेसी नहि आबै, कारण गर्मीसँ स्वास्थ्यपर दुष्प्रभाव पड़ैत अछि आ दुधारू जे माल अछि ओ दूध देब जे हमरा लोकनिके अनुमान रहैत अछि ओहिसँ कम शुरू कऽ दैत अछि, तैँ अहूपर ध्यान देबाक चाही। गर्मीमे जे ओ ठंडा रहै, गर्म नहि रहै पशु,
1: आ ओकरा उगना भाई जे छै से छायादार आ हवादार स्थान राखी, आ गर्मीसँ होमयवला लूसँ बचेबाक लेल गुड़ आ हल्दीके नुस्खा सेहो अपनाबी कि नहि।
0: ठीक है कहलहुँ, आ फेर बेर रहत तऽ हमसब गपशप करब विजय भाइ, मुदा आप पहिने सुनि लैत छी
1: किछु गीत।
0: गीत
1: तऽ सुनल जाय, एक गीत।

0: ओना भाई एखन हमरा लोकन अरविंद कुमार झा के स्वर में लोकगीत सुन रहा छलों। आ देखू ना भाई, आ हमरा लोकन एक सुन भेंट वार्ता, एकीकृत मछली पालन एवं इसके लाभ। भेंट वार्ता कर मनोज कुमार आ भेंट करता रंजना झा।
1: तो सुनल जा दोनों गोटा के बीच भेल गपशप।
0: सुनल जा।
2: आई दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा के माछ विभागक तकनीकी सहायक मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार। मैं आपको बताऊंगा मछली पालन किस प्रकार से फायदेमंद है। मछली पालन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि किसान भाई एक तालाब बनाकर, पोखर बनाकर आप मछली पालन कर सकते हैं और इसमें काफी संभावना है।
2: हाँ हाँ, देखियो मनोज जी, अपन सबके जो मिथिलांचल है में कहल गेल छे पग पग पोखर माछ मखान, आ ई अछि मिथिला के शान। ए तो जगह जगह पोखर जलकर सब जे होइ छे से भरल अछि, ओइ में माछक व्यवसाय केना नीक जका हेतै ओइ के संबंध में अहाँ की कहऽ चाहै छी।
3: मछली पालन में एक एकीकृत कृषि एक प्रणाली होती है जिसमें किसान भाई मछली पालन के साथ साथ अन्य खेती भी कर सकते हैं, जैसे कि धान के साथ मछली पालन, मुर्गी के साथ मछली पालन, सुअर के साथ मछली पालन, मवेशी के साथ मछली पालन, बतख के साथ मछली पालन कर सकते हैं। अच्छा। ये सारी खेतियों को एक साथ करके वो अपनी अतिरिक्त आय जुटा सकते हैं।
2: हाँ हाँ।
3: जिसमें हम आपको बताएंगे कि धान के साथ मछली पालन अगर करना चाहते हैं तो क्या क्या

0: सावधानियां हमें रखनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है।
1: अच्छा
0: तो धान के साथ मछली पालन करना एक इसलिए भी जरूरी है कि किसानों की अतिरिक्त आय इससे मिल जाती
1: निश्चित
0: है,
1: रूप से।
0: और इसमें हमें धान के खेत में जैसे पेस्टिसाइड डालना पड़ते हैं, उर्वरक डालना पड़ते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: तो उनकी भी जो जरूरत
1: लागत
0: है,
1: जो लगे
0: लागत
1: वो
0: है, वो
1: कम
0: कम
1: लग
0: हो
1: सकते।
0: जाती है, क्योंकि मछली का जो मलमूत्र निकलता है वो भी एक उर्वरक का ही काम
1: अच्छा, वो
0: करता
1: खादक
0: है,
1: काज
0: खाद
1: करते
0: का
1: जी।
0: काम करता है जी। धान का खेत में पानी आपको रखना पड़ेगा, लगभग 2 फीट पानी कम से कम रखना पड़ेगा, जिससे कि मछली उसमें जिंदा रह
1: हाँ
0: सकें।
1: हाँ
0: और इसके लिए धान की कुछ विशेष किस्में हम यूज करते हैं, जैसे कि जयसूर्या है, जलमग्न है,
1: अच्छा
0: जलांधी है, मनोहरशाली, AR1, IB1, IB2, ये कुछ प्रजातियां हैं धान की जो कि पानी में रह सकती हैं।
1: अच्छा
0: इस प्रणाली के लिए मछली की भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि तिलापिया, मांगोर, मरेल, कॉमन कार्प इत्यादि। इन मछलियों को हम धान के साथ आसानी से पाल सकते हैं।
1: मनोज जी, एकटा बात अहाँ बताओ, जे अहाँ धान के साथ मच्छक पालन के विषय में अखन कह रहल छी, तऽ अपन सबके मिथिलांचल के जे जते जगह जमीन अछि जाहिमे कि धानक खेती होइ छै, तऽ जतेक जते जमीन छै जगह की मात्र जतऽ कि धान के खेती भऽ रहल छै, सब जगह ई माछ के खेती संग में कयल जा सकै छै।
0: जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए धान का जो खेत है उसमें
1: हाँ
0: मेड़
1: हाँ
0: का जो एरिया है वो
1: अच्छा
0: थोड़ा सा ऊंचा आपको करना पड़ेगा, कि जिसमें खेत में लगभग 2 फीट पानी
1: पानी
0: रोक
1: पानी
0: सके।
1: रह
0: जी
1: सके,
0: जी
1: तै दुआरे मेर कनी ऊंच रहक चाहिए,
0: जी
1: बाकी सब जगह पर कैल जा
0: बाकी
1: सके।
0: सब जगह कर सकते हैं, बस आपको धान की किस्में, आपको जो धान पानी में रहने योग्य
1: हाँ
0: किस्में
1: हाँ
0: हैं उनका चयन करना
1: अच्छा,
0: पड़ेगा।
1: जे बेसी पानी मंगे छे ओ धान
0: जी
1: के
0: जी
1: लगेबा आवश्यकता छे।
0: जी
1: आ एकर संग संग अहाँ कहलिए धान के संग संग और किछु किछु नाम जे लेलिए ओ की सब छे?
0: मछली के साथ मुर्गी पालन भी किया जा सकता है। इसमें जो मछली का तालाब है उसमें तालाब के ऊपर ही हम एक मुर्गी का जो बाड़ा बोलते हैं
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: व्यवस्था बना सकते हैं, और उसमें 2 प्रकार के सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो लिटर सिस्टम रहता है, जिसमें कि मुर्गी का जो बाड़ा है उसमें भूसा का एक लिटर बिछा दिया जाता है बिस्तर के जैसा, और उस पर मुर्गियों को रखा जाता है, और मुर्गी अपना मलमूत्र उस पर छोड़ती हैं, खाना भी उस पर छोड़ती
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: तो उसको हम तालाब में डाल सकते हैं, वो खाद का काम करता है।
1: अच्छा
0: दूसरा व्यवस्था रहता है कि डायरेक्ट हम जो फर्श जैसा बना देते हैं कि जो भी मुर्गियों का वेस्टेज निकलता है वो सीधा तालाब में जाए, और उसको मछलियाँ अपने भोजन के रूप में उपयोग करें, और इससे मछलियों को अतिरिक्त भोजन कम देना पड़ेगा, और साथ साथ में हमें 2 उपज भी मिलेंगी, मुर्गी भी मिलेगा साथ में मछली भी मिलेगा।
1: मुर्गी के जते निकृष्ट चीज होइ छै ओ धान के लेल कि माछा के लेल खादक काज करै
0: जी
1: छै कि
0: जी
1: नहि? अच्छा, आ एकर संग संग एकटा और बातक जानकारी दिए, जे एखन माछक व्यवसाय केना नीक होतै एहि सम्बन्धमे अपनेसँ जानकारी भेट रहल अछि, तऽ माछके जीरा जे होइ छै जे कि ओहन कोन जगह से लेल जाए जे प्रमाणित जगह होइ, जतऽ कि स्वस्थ आ शोधक माछ भेटा, जाहिमे रोग व्याधि कम लागैत होइ, ओहिमे परेशानी कम होइ, खर्च लगैत होइ, ओ केहन जगह से लेबाक चाही?
0: देखिए, मछली का जो जीरा है वैसे तो हर जिले में उसका हैचरी बना हुआ है,
1: हाँ हाँ
0: सरकार का भी हैचरी बना हुआ है, वहाँ से भी किसान भाई ले सकते हैं, और वहाँ पर हमारी जो भारतीय कार्प मछलियाँ हैं उनका जीरा उपलब्ध होता है।
1: अच्छा
0: लेकिन अभी जो मछली पालन व्यवसाय है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, नई
1: निश
0: नई किस्में मछली की किस्में इसमें आ गई हैं,
1: अच्छा
0: तो जो जल्दी बढ़ने वाली, किसान चाहता है कि उनको जल्दी बढ़ने
1: जल्दी,
0: वाली
1: हाँ
0: किस्में
1: हाँ
0: चाहिए, तो ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि तिलापिया है, पंगेसियस है, ये मछलियां काफ़ी जल्दी बढ़ जाती हैं, और इनका जो बीज है वो बिहार राज्य में थोड़ा कम हैचरी है इसका, इनका बीज जो है बंगाल में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उड़ीसा में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कुछ जयंती रोहू एक मछली की वैरायटी है जो नई वैरायटी आई है, और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट इसका है,
1: अच्छा
0: और इस मछली का जो बच्चा है वो आपको भुवनेश्वर से मिलेगा, वहाँ से एक प्रमाणित सीड आप ले सकते हैं
1: अच्छा
0: इसका।
1: अच्छा तो ई अहाँ के प्रमाणित जगह से लेबा के विषय में बतेलहुँ। आ एकटा बात सबसे मुख्य बात अभी छै, जे हमसब तऽ जतेक जलकर अइ ओहिमे देखै छियै जे जीरा दै छथिन, मुदा जलकर पहिले कोन रूप से व्यवस्थित होबक चाही जाहिसँ कि जीरा देला के बाद स्वस्थ आ मतलब कि स्वच्छ माछक पालन भऽ सकै, ओहिमे बेसी ग्रोथ भऽ सकै, वृद्धि भऽ सकै, ताहि लेल जलकर के कोन रूप से व्यवस्था करबाक चाही या देखरेख रहबाक चाही?
0: जीरा डालने के लिए, जीरा डालने से पहले किसान

0: भाई को तालाब की तैयारी करना जरूरी है और उसमें संतुलित आहार देना जरूरी है जिससे कि उसकी उपज अच्छी हो।
1: निश्चित
0: तो इसमें जो है सबसे पहले हमें तालाब प्रबंधन करना पड़ता है कि किसान भाइयों के पास दो प्रकार के तालाब हो सकते हैं, एक तो जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है साल भर, और एक तालाब ऐसे हैं जिसमें 4-5 महीने तक पानी रहता है। तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं जीरा उत्पादन के लिए।
1: अच्छा
0: कुछ तालाब ऐसे हैं कि जिसमें साल भर पानी है तो उसमें कई प्रकार के खरपतवार आ जाते हैं, कई प्रकार की मांसाहारी मछलियां आ जाती हैं जो कि जीरा के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। तो
1: अच्छा
0: हमें सबसे पहले इनकी सफाई करना पड़ता है, उस तालाब से जितने भी खरपतवार हैं उनको निकालना है और जितनी भी मांसाहारी मछलियां हैं उनको निकालना है। तो ये जो मांसाहारी मछलियों को निकालने के लिए हम महुआ की खली का उपयोग कर सकते
1: अच्छा
0: हैं, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के डोज के हिसाब से इसको डालेंगे तो सारी जो भी मांसाहारी मछलियां हैं वो सारी मर जाएंगी।
1: अच्छा
0: दूसरा, इसमें चूना भी हमें डालना पड़ता है, चूना से पानी का पीएच मेंटेन होता है और ये मछलियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। सो इसमें 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चूना हमें डालना पड़ता है। तीसरा, हमें खाद भी डालना पड़ता है इसमें, क्योंकि हमें पता है कि जो मछली का जीरा बहुत छोटा साइज का
1: हाँ
0: होता
1: हाँ
0: है, इसको हम मार्केट वाला अगर दाना देते हैं तो वो उसके मुंह का साइज में नहीं
1: नहीं
0: आ
1: आ
0: पा
1: सके
0: सकता है।
1: तेज।
0: तो इसलिए उसको प्राकृतिक भोजन चाहिए जो कि तालाब में खुद डेवलप हो। तो
1: अच्छा
0: उस प्राकृतिक भोजन को बनाने के लिए हमें तालाब में कुछ खाद डालना पड़ती हैं,
1: जी हाँ
0: तो जिसके लिए हम 750 kg महुआ की खली या सरसों की खली और 200 kg गोबर और 50 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये तीनों का मिश्रण बना के हम
1: अच्छा
0: उस तालाब में उपयोग कर सकते हैं। और इस 1000 किलो जो मिश्रण बनेगा इसका लगभग 30% हम पहले एक साथ
1: एक
0: डाल
1: साथ
0: देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ डोज है उसको
1: बारी बारी से
0: बारी बारी
1: डालने
0: से
1: लगे।
0: हम डालते रहेंगे। तो ये
1: अच्छा
0: तैयारियां हमें जीरा डालने के पहले
1: पहले
0: करना
1: होबाक
0: पड़ती हैं।
1: चाही। जीरा डाला सब पहिने तो बीज गेलिए जे ई तैयारी होबाक चाही। आ जहन ई तैयारी भेला के बाद माछ के जीरा ओहिमे दऽ दै छियै तऽ ओकर वृद्धि के लेल, माछक वृद्धि के लेल आ माछ स्वस्थ रहै ताहि लेल की सब करबाक चाही।
0: जीरा डालने के बाद सबसे पहले तो भोजन प्रबंधन करना पड़ता है कि मछली का जो जीरा है वो उसको अगर सही तरीके से न्यूट्रिएंट मिले, सही
1: हाँ
0: तरीके
1: हाँ
0: से भोजन मिले तो उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी बढ़ती है।
1: निश्चित रूप
0: तो
1: से
0: भोजन के लिए हम आहार के रूप में जैसे चावल की भूसी है, सरसों की खली है, गेहूं का चोकर है, इनको मिला के हम उपयोग कर सकते हैं। जीरा जैसे ही तालाब में डालते हैं तो जो पहले सप्ताह में हम 1 लाख जीरा के लिए लगभग 500 से 600 ग्राम खाना देते हैं,
1: अच्छा
0: फिर अगले सप्ताह से वही खाना दुगना कर देते हैं हम लोग,
1: अच्छा
0: लगभग 1200 ग्राम
1: धीरे
0: प्रति
1: धीरे ओकरा
0: लाख
1: बढ़ाबै छियै
0: जी।
1: अहाँ
0: और
1: सब।
0: ये जो जीरा पालन है लगभग 15 से 20 दिन का होता है, इसके बाद वो आधा उंगली के साइज का आ जाता है जिसको हम फ्राई बोलते हैं,
1: अच्छा
0: उसके बाद इसको दूसरे तालाब में शिफ्ट कर देते हैं।
1: बहुत नीक गपक जानकारी देले। एक और गप के जानकारी दिया जे माछक व्यवसाय के लेल जे किछ योजना छे ओ कनिक संक्षेप में बता दी।
0: मछली पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काफ़ी लाभकारी अभी हो रही है
1: अच्छा
0: और इसके माध्यम से किसान भाई आप कोई भी मछली का जो व्यवसाय करना चाह रहे हैं वो इस योजना के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% अनुदान मिलता है और SC ST के जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनको 60% अनुदान इस पे मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी रहती है जिसको हम DPR बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और जो भी आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करके आपको अपना जो मछली पालन का ऑफिस है
1: जी हाँ
0: वहाँ पर देना पड़ेगा और उस योजना का हम लाभ ले सकते हैं।
1: अच्छा
0: इसमें हर योजना के लिए इसमें लाभ है।
1: अच्छा देखियो बहुत नीक गपक जानकारी देलिए जे एहि के माध्यम से माछ जे व्यवसाय करय वाला छथि तो उनका बहुत लाभ भेट सकै छन। आ एकटा चलत चलत गपक और जानकारी दिया जे स्वरोजगार के रूप में आइ काल्हि ई सब चीज बहुत बेसी देखल जा रहल छै तो क्यों जे माछक व्यवसाय की सब गोटे सब वर्गक लोग स्वरोजगार में जुड़ गेल छथि तो हुनका लेल अहाँ की संदेश देबक चाहबन। एकटा माछक व्यवसाय के रूप में अहाँ की अपन संदेश देबय चाहबन।
0: मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है और इसमें युवा, मछुआरे या किसान

0: सभी लोग इसको कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: और इसके लिए सरकार भी काफ़ी योजनाएं चला रही है। तो आपको जो है पैसे की ज़रूरत है मछली पालन व्यवसाय के लिए, तो वो सारी फंडिंग जो है सरकार से आपको मिल जाएगी। और इसके लिए प्रशिक्षण की जो ज़रूरत है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में इसके लिए समय समय पर ट्रेनिंग्स भी होती
1: हाँ
0: हैं, तो
1: हाँ
0: वहाँ पर आके किसान भाई ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं।
1: बहुत नीक गप के जानकारी दिलिए। देखियो माछक व्यवसाय केना बेसी से बेसी नीक हुए। मनोज कुमार जी अहाँ बहुत नीक गपक जानकारी दिलिए। दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो में अहाँ के संग संग बहुत बेसी धन्यवाद।
2: उगना भाई, एखन हमरा लोकनि भेंट वार्ता सुनि रहल छलहुँ। एकीकृत मछली पालन एवं इसके लाभ भेंट वार्ता कर छला मनोज कुमार आ भेंटकर्ता रंजना झा। तऽ आब
3: एहिक संग आब आजुक खेती गृहस्थीक बेर सम्पन्न होइत अछि। तऽ स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि से चलबाक आज्ञा लैत छियनि।
2: नमस्ते
3: खूब प्रसन्न रहू विजय भाई।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बद

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को 1 जुलाई से लागू करने की अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों को 48 घंटे के अंदर दिया जाएगा जवाब। और केंद्र सरकार ने कहा, देश में 60 दिन के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन के LPG का भंडार उपलब्ध है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और लोक शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सहयोग पोर्टल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में पोर्टल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर दर्ज शिकायत का 30 दिनों में निष्पादन कर आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी। श्री चौधरी ने बताया कि जो लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सक्षम नहीं है, वे सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
2: कोई यदि कष्ट में जा रहा है, उसके निष्पादन के लिए पोर्टल बनाया गया और शुभ नंबर है 1100 नंबर डाला गया, तो बिहार की जनता को इसका पूरा लाभ मिले। ये ऑनलाइन भी हो, ऑनलाइन ऑर्डर भी निकले।

0: करते हैं तो उनको ऑर्डर कॉपी दे, लेकिन ऑनलाइन को ऑर्डर निकालकर उनको तुरंत भेजने का काम करे। और पंचायत में ये लगना है तो आम लोगों को इसका सुविधा मिल सके, ये सारी चीजों को हमको इंश्योर करना है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग पहल के तहत महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण किया। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस पथ से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद नितिन नवीन भी मौजूद रहे। इधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मंदिरी नाला सड़क का नामकरण नवीन किशोर सिन्हा पथ करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध नियंत्रण और सुशासन की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों को 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
2: कानून का राज है साथी, मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा सर। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते।
1: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज पदभार ग्रहण किया। श्री सिन्हा ने कहा कि विभागीय योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने एग्री स्टैक परियोजना के तहत कल से 30 जून तक फार्मर्स रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की। खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
3: पहली प्राथमिकता रहेगी पारदर्शिता के साथ काम हो, और कभी कभी शिकायतें मिलती है कि अवैध रूप से बालू का खनन हो रहा है, ओवरलोड गाड़ियां जा रही है, कुछ हमारे पदाधिकारी भी उसमें संलिप्त रहते हैं, कुछ ऐसे माफिया भी संलिप्त रहते हैं, तो सबको मैं चेतावनी देता हूं कि वो सतर्क हो जाएं, जो गड़बड़ करेंगे उनको फिर बचेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई होगी।
1: भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा ने आज बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पूर्व मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में वे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यह सीट पूर्व MLC राधाचरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। देश के पास 60 दिन के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन के LPG का भंडार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की 5वीं बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने का संकल्प लेने की अपील की है।
4: देशवासियों से जो PM ने अपील की, हमारी विदेशी मुद्रा खर्च जिन चीजों में होता है, तेल में सबसे ज्यादा होता है, क्या हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं तो EV खरीदें, मेट्रो से चले, बस से चले, और LPG और PNG के बदले इंडक्शन चूल्हा जलाएं, अगर हो सके तो सोलर प्लेट लगाएं।
1: इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच लोगों को पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल में अनुशासन बरतने का संकल्प लेना चाहिए।
5: वैश्विक समस्या है, सभी जगह पे दिक्कत हो रही है, हर देश में रेशनिंग का काम आज हो रहा है, उसी तरीके से रेशनिंग करने की जरूरत है, अनुशासन

0: जरूरत है, कुछ समस्या आती है तो समय थोड़ा अनुशासित होकर अगर हम लोग समस्या को झेल जाते हैं तो फिर आने वाले समय के लिए बेहतर होता है, अर्थव्यवस्था और बेहतर होकर उभरेगी और मजबूत होकर उभरेगी।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502, हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है।
5: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के खाजपुरा स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। नई दिल्ली के मुंडका पक्करवाला टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली की आज से शुरुआत हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स स्वचालित रूप से काट लिया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि वर्तमान समय में जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। मगध महिला कॉलेज पटना के वार्षिकोत्सव उड़ान को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय सेना में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका का उल्लेख किया। श्री हसनैन ने छात्राओं से अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की अपील की। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर स्थित खटोरी गांव में पूर्वोत्तर भारत के पहले हाईटेक हैचरी प्लांट का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय खनन और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
6: दिनांक 12 मई राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: भागलपुर जिले के अजगैबीनाथ धाम

0: के नमामि गंगे घाट पर नहाने के दौरान डूबने से दो युवकों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरोली बालकरी से 10 बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। दरभंगा जिले के बहरी बाजार स्थित एक स्टूडियो में पुलिस ने छापेमारी कर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। मौके से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के चितना थाना क्षेत्र अंतर्गत अगरवा गांव से पुलिस और एसएसबी की टीम ने 2 किलो 700 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड स्थित एक फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर 46 कार्टन शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। सारण में 2 और गया, मुंगेर तथा रोहतास जिले में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को 1 जुलाई से लागू करने की अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों को 48 घंटे के अंदर दिया जाएगा जवाब। और केंद्र सरकार ने कहा, देश में 60 दिन के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन के एलपीजी का भंडार उपलब्ध है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुपौल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी।
4: सुपौल व्यवहार न्यायालय परिसर में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 16 समझौते के आधार पर मामलों के निष्पादन के लिए कुल 21 बेंच का गठन किया गया। इनमें सुपौल न्याय मंडल में 12 बेंच, वीरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में 5 बेंच तथा ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन के लिए टाउन हॉल में 4 विशेष बेंच बनाई गई थी, जिसमें सुलहनीय आपराधिक मामलों, वाहन दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक ऋण, बिजली विभाग से संबंधित मामलों सहित विभिन्न वादों का त्वरित और निःशुल्क निष्पादन किया गया। वहीं पक्षकारों की सहायता और समस्याओं के समाधान के लिए ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग परिसर में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आपसी सहमति के आधार पर सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। इधर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने बीते दिनों सुपौल जिले के निर्मली और वीरपुर अनुमंडल में नवनिर्मित व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह सुपौल निरीक्षक न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार सिंह, जिलाधिकारी सावन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक शरद आर्य सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान अतिथियों का मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और माला पहनाकर स्वागत किया गया। नए न्यायालय भवनों के शुरू होने से अब स्थानीय लोगों को छोटे मोटे मामलों के लिए सुपौल नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों जिले में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई

0: और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ तथा कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। विक्रमशिला पुल के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल ने सुपौल के सरायगढ़ जंक्शन से देवघर तक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। समस्तीपुर मंडल द्वारा गाड़ी संख्या 05573 एवं 05574 सरायगढ़ देवघर सरायगढ़ अनारक्षित विशेष ट्रेन का परिचालन 7 मई से शुरू किया है, जो 31 मई 2026 तक प्रतिदिन चलेगी। यह विशेष ट्रेन सुपौल सहरसा सिमरी बख्तियारपुर मानसी खगड़िया सबदलपुर मुंगेर सुल्तानगंज भागलपुर और बांका होते हुए देवघर तक जाएगी। बीते दिनों राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों एवं जिले के विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, गश्त बढ़ाने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि मुख्य सचिव ने बीरपुर एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
1: फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है, उस पर चर्चा की गई कि उसको कैसे जल्दी से जल्दी शुरुआत करना है टारगेट लेकर। इसके अलावा उसके बारे में विस्तृत प्रेजेंटेशन था, और दूसरा था जो बीरपुर एयरपोर्ट बन रहा है इसका जमीन एक्विजिशन कैश स्टेटस है और जब टर्मिनल बिल्डिंग कब शुरू होता ये होगा। इसके अलावा और जिले की जो अलग अलग विकासात्मक गतिविधियां थी उस पर और बॉर्डर संबंधी सब पर टर्मस पे।
0: जिले में रसोई गैस की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है और आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव ने बताया कि जिले की कुल 51 गैस एजेंसियों के पास लगभग 13,394 गैस सिलेंडरों का भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिदिन औसतन 5601 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निबंधन कार्यालय सुपौल में पदस्थापित अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उनके कार्यालय और किराए के मकान में छापेमारी की। जांच के दौरान ईओयू को अमरेंद्र कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक जांच में उनके पास लगभग 1,10,64,000 रुपए की आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है, जो उनकी आय से करीब 65.08% अधिक बताई जा रही है। ईओयू की टीम मामले से जुड़ी दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच में जुटी हुई है।
2: अभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता रवि शंकर चौधरी।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर
4: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

टक्कर फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू के आवाजों में। माया गोविंद के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अनु मलिक ने।

जीना तेरी गली में। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। रविंद्र रावल के लिखे इस गाने को संगीत दिया था बाबुल बोस ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।

फूल और अंगार। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी के आवाजों में। रानी मलिक के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अनु मलिक ने।

तड़ेपार फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

कार्यक्रम सिंगरहार सुन्निहार समस्त गोटे के स्वागतक संग माला झाक नमस्कार। एक कार्यक्रम में साहित्य आ साहित्य से संबंधित विभिन्न विषय पर अपने लोकन चर्चा सुने छी, ताई मध्य गीत संगीत। साहित्य संबंध रखैत अछि कला सँ, संस्कृति सँ आ रीति सँ। मिथिलाक सांस्कृतिक आ आध्यात्मिक पृष्ठभूमिक दिग्दर्शन बिना ओतय के परंपरागत लोक देवताक चित्रणक बिना पूर्णता प्राप्त नहि कऽ सकैत अछि। ई लोक देवता सब गाम सब में, समाजक सुख दुख में, हंसी खुशी में, रोग व्याधि में, आपद विपदा में सर्वदा लोकक संग पाओल जाइत छथि। मात्र लोक कंठ वा किंवदंतीय में नहि, अपितु लोक साहित्य जन साहित्य सेहो लोक देवताक चर्चा बिना अपूर्ण मानल जाइत अछि। कोनो भूमि खंडक साहित्यक पूर्णता ओकर लोक साहित्यक समावेश बिना संभव नहि। लोक साहित्य में ओतय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तत्कालीन जीवनक स्पष्ट बिंब प्रतिबिंबित रहित अछि। मिथिला में लोक साहित्यक प्रचार प्रसार आ प्रकाशन एखनो बड कम अछि। ई प्रायः लोककंठ आखि से पिहानी में समाहित अछि। मिथिला लोकक आस्थाक प्रतीक कतेको देवी देवता छथि, जे प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप सँ मिथिलाक क्षण प्रतिक्षण सब परिस्थिति में संग पुरै छथि। लोक श्रद्धा सँ वा अनिष्टक भय सँ हिनका प्रति आस्था व्यक्त करैत छथि। ई देवता सजीव आ निर्जीव दुनू रूप में पूजित छथि। हिनका लोक आस्था में देवत्वक श्रेणी प्राप्त छन्। इहो पौराणिक देवता सरिस दीप्तिमय, गरिमामय, प्रभाम्य, कल्याणमय स्वरूपे जनमानस में महत्व प्राप्त केने छथि। वेद, पुराण, उपनिषद आ धर्मशास्त्र में हिनक सभक नाम नहियो अंकित रहने ई अपन क्षेत्र में जन साधारणक मध्य सर्वशक्तिमान छथि। मिथिलाक कोनो गाम एहन नहि जतय नदी, पोखरि, जंगल झाड़, बाट घाट, गाछ वृक्ष में देवताक वास नहि होइन। ई कतौ गाछ तर कतौ गह्वर में प्रतिष्ठित भेला। ई लोक देवता लोक कल्याण, भाग सुहाग, सुख दुखक प्रदाता छथि। ते हिनका प्रति श्रद्धा आ आस्था, कामना पूर्तिक आशा कतौ न कतौ अनिष्टक भय सँ सुदृढ़ अछि। एहि देवता लोकनिक गुण गरिमा, प्रभाव, पूजा, परस्पर गाथा गायन आ लोकगीत आ नृत्य में सेहो समाहित अछि। गीत संगीत के चर्चा आयल तऽ अपनो लोकनि सुनै छी एकटा गीत।

चंद्रिका कुमारी सँ सुनि रहल छलहुँ हमरा लोकनि ई गीत। विवाह काल सेहो गाछ वृक्षक पूजाक प्रावधान मिथिलामे खूब अछि। ओतहि देवी देवता लोकनि मिथिलाक सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक परम्पराके अक्षुण्ण रखबामे सेहो सहायक छथि। ई देवता सब क्षेत्र आधारित छथि आ अपन अपन क्षेत्रमे सर्वशक्तिमान मानल जाइत छथि। लोक देवताक संख्या असंख्य अछि। सब गाममे एकटाक एहनो लोक देवता रहै छथि जिनका प्रति गामक सब गोटे आस्था रखैत छथि। गामक कोनो पिपरक गाछ तर हिनक बास छनि जे ओहि गामक सब तरहें रक्षाक भार अपना पर रखने रहै छथि। एहि ब्रह्म पूजाक प्रारंभ कहियासँ आ कोन तरहें भेल तकर कोनो प्रमाण प्राप्त नहि।

0: हिनक संबंध में जे लोक कथा अछि से एहन अछि जे गामक सज्जन महापुरुष समाजसेवी त्यागी जे अपन जीवन काल में आचरण स्वभाव सँ उपकारी रहल होइत आ कहियो ककरो अनिष्ट नहि केने होइत आ न सोचने होइत ओ गामक लोकवेद जीव जंतु गाछ वृक्ष माटि पानि सभक रक्षा करैत होइत ओहने शुद्ध निश्चल परोपकारी बटुक कालांतर में ब्रह्म आ गामक डिहवार बनि जाइत छथि। मिथिलाक प्रायः सब गाम में विभिन्न विभिन्न नामक डिहवार ब्रह्म भेटल छथि आ जे विशिष्ट आत्माक प्रतीक थिका। ई ब्रह्म गामक कोनो शांत एकांत स्थान में पिपरक गाछ तोर प्रायः रहैत छथि जे गामक ब्रह्म स्थान कहबैत अछि। प्रत्येक गाम में बरखक कोनो दिन विशेष सामूहिक पूजा होइत अछि। पिपरक जड़ में माटिक चबूतरा आ चबूतरा पर बाँस ने फहरैत लाल रंगक ध्वज गाछ में कतेको भत्ता लपेटल जनेऊ आ पीढ़ी पर चढ़ाओल फूल पान अक्षत दूध पीठी आ घीक प्रवाहित धार कात में सजाओल माटिक घोरा। ब्रह्मस्थान में ढोल पिपही तासा बजैत अछि आ घरे सँ फूल पान प्रसाद चढ़ा पूजा कयल जाइत अछि। एहि प्रसंग में लोक कंठ में किछ परंपरागत गीत अछि जे गाम आ क्षेत्र भेदे फराक फराक अछि। एहि सब तरहक कथा लोक गाथा में चेतना अनैत अछि। तऽ सुनै छी एहने सन ई वार्ता मैथिली लोक गाथा में सामाजिक चेतना।
1: चेतना वो अनुभूति थिक जे मस्तिष्क में पहुँचय वाली अभिगामी आवेग सबसँ उत्पन्न होइत अछि जकर अर्थ तुरंत अथवा बाद में लगाओल जाइत अछि। चेतना मनुष्यक वो विशेषता थिक वो ओकरा जीवित रखैत अछि आ ओकरा व्यक्तिगत अथवा अपन वातावरणक विषय में ज्ञान कराबैत अछि। यह विशेषता मनुष्य में एना काज करैत अछि जाहि कारण वो जीवित प्राणी बुझल जाइत अछि। चेतना वो विशेष गुण अछि जे मनुष्य के जीवित बनबैत अछि आ चरित्र ओकर सम्पूर्ण संगठन अछि जकरा द्वारा ओकरा जीवित रहबाक वास्तविकता व्यक्त होइत अछि अर्थात जिनका द्वारा जीवन के विभिन्न कार्य चलाओल जाइत अछि। कोनो मनुष्यक चेतना आ चरित्र बहुत दिनक सामाजिक प्रक्रमक परिणाम होइत अछि जे अवचेतन अथवा प्राकृतिक मन पर अपन नियंत्रण रखैत अछि। ओ ज्ञानात्मक भावात्मक आ क्रियात्मक होइत अछि। ई सामाजिक वातावरणक संपर्क सँ विकसित होइत अछि। वातावरणक प्रभाव सँ मनुष्य नैतिकता औचित्य आ व्यवहार कुशलता प्राप्त करैत अछि। जातिगत पृष्ठभूमि जन्य उपेक्षा आ अभावक प्रतिक्रिया स्वरूप कलात्मक विस्फोटक नाम थिक लोकगाथा। विभिन्न भारतीय भाषा में प्रचलित लोकगाथा सब शब्दक सही अर्थ में लोक काव्य थिक। अक्षर ज्ञान अथवा आतंक आ पांडित परंपरा के विपरीत ई लोकगाथा सब ओहि निरक्षर लोक सभक सझिया चेतनायुक्त मुक्त अभिव्यक्ति थिक जिनका अक्षर ज्ञानक सुअवसर नहि भेटलनि। लोकगाथा पोथी रटंत विधाक समानांतर व्यापक जीवनानुभवक चेतना काव्य थिक। कबीरक भाषा में आँखिन देखी काव्य। यह कारण अछि जे जतय पंडित लोकनि आ विद्वान रचनाकार के काव्य रचना के नव नव विषय तकलो पर नहीं भेटे अछि ओतय एहि लोकगाथा सब में विषय विविधता आ नवीनता चमत्कृत करैत। लोकगाथा समाजक रचना थिक जाहि में सामाजिक सांस्कृतिक वस्तु स्थितिक यथार्थ परिचय भेटैत अछि। सामाजिक चेतना ओहि में अंतर्निहित रहैत अछि। जहिना लोक राम कृष्ण विष्णुक रूप में व्यक्ति पूजा वीर पूजा करैत छला तहिना इहो समाज अपन अपन नायक लोकनि के तकलनि आ हुनका उच्च शिखर पर प्रतिष्ठापित कयलनि। एहन लोक नायक वीर पुरुष लोक देवता के गाथा के लोकगाथा के रूप में गायन आरंभ भेल आ आइ धरि ई जीवंत अछि। ईश्वरीय मान्यता के पश्चात एक दोसरा के लेल आदर आ श्रद्धा के पात्र बनाओल गेल। एहि मान्यता के चिंतक हर्बर्ट स्पेंसर सेहो स्वीकार कयलनि। हुनका अनुसार मानव जीवनक आदि चरण में भूमि के लऽ कऽ संघर्षक स्थिति रहित छल। संघर्ष में विजय प्राप्ति एवं यथास्थिति के लेल ओ आदि दैविक शक्ति सभक आराधना करैत छलाह। पराजित पक्ष सेहो अपन स्थिति मजबूत कऽ दोसर पक्ष के पछाड़बाक अभिलाषा

सँ एहि शक्ति सभक आराधना करैत छला। परिणाम तँ युद्ध भय आतंक जय पराजय हंसी खुशी के मध्य सँ एहि देवी देवता लोकनायक लोकनिक जन्म भेल। कामत सेहो मानव समाजक आरंभिक चरण में आधिदैविक ज्ञानक वर्चस्व के स्वीकार कयलनि अछि। सुप्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक इमाइल दुर्खाइम सेहो एहि लोकनायक लोकनि के परिचय जातीय प्रतीक रूप में देलनि अछि। तँ मैक्स वेबर आदिम समाज पर धार्मिक मान्यता के प्रभाव बेसी कहलनि अछि। प्रोफेसर धुरिए सेहो लोकनायक सभक सांस्कृतिक ओ सामाजिक पृष्ठभूमि के रेखांकित कयलनि अछि। मैथिली लोकगाथा काव्य अत्यधिक समृद्ध ओ सामाजिक चेतना युक्त अछि। एहि मध्य विभिन्न युगक इतिहास समाज दर्शन लोक जीवन एवं चारित्रिक उत्कर्ष सहज रूपे अंकित भेटैत अछि। मिथिलाक किछु मैथिली लोकगाथाक नायक तँ जाति निरपेक्ष छथि, जनिक पूजा सब जातिमे अथवा अधिक जातिमे होइत अछि, परंतु किछु लोकगाथा नायकक पूजन अर्पण प्रेरण खास खास जातीयमे होइ छै, जाहिमे सामाजिक चेतना समाहित रहै छै। कहि सकैत छी जे एहि मादे ई नायक लोकनि सामाजिक जागरणक चेतना स्रोत रूपे दिग्दर्शित होइत छथि। यथा अमर सिंह जय सिंह दीनाभद्री दुर्गा दयाल सिंह फेकूराम बिहुलात बेनुराम मोतीदाई रैयारन पाल लालबन बाबा लोरिक नयका बंजारा सलहेश कारिक पजियार छेछन मधुकर बाबा बासावन बख्तोर ससिया महाराज श्याम सिंह दलित आदिक मध्य। एहिसँ स्पष्ट अछि जे उपरोक्त लोकगाथा आजुक विकास दिस बढ़ैत समाजमे वर्ग ओ सामाजिक चेतनाके एकटा सशक्त ओ प्राणवंत दर्पण बनि गेल अछि। उपर्युक्त लोकगाथा सभमे समन्वयात्मक उपक्रम भरल पूरल अछि। एहि सभमे जनपदीय संस्कृति वर्ग वर्ण ओ जाति उपजाति मध्य परम्परित आस्था रीति नीति कलात्मक माध्यम आदि के बीच सामंजस्य प्रयास सँ आई ओ विशेष अध्ययन अनुशीलनक विषय बनि गेल अछि। फलतः लोकगाथाक प्रभाव विस्तार भेल अछि, एकर समन्वयात्मक स्वरूप के सेहो देखल जा सकैत अछि। पहिल ई जे जनसामान्य वो आभिजात्य वर्गक बीच सांस्कृतिक सेतुक काज करैत अछि। कुछ मैथिली लोकगाथा गाथा नायक राय रणपाल एवं प्रेमिल नायिका गांगो तथा वंशीधर बाभनक गाथा गाथानायक लोरिक जदुवंशी एवं उघरा पमार के बीच द्वंद्वक स्थिति रहितो सामंजस्य चेष्टा लोकगाथाक सकारात्मक दृष्टि महत्वपूर्ण अछि। दोसर पारिवारिक एवं सामाजिक सामरस्य गाथाकालीन समाजमे बहुपत्निक सुख समृद्धि बोधक मानल जाइत छल। लोरिक पत्नी माजेर एवं प्रेयसी चनैन मोरंग राज हड़वा बड़बाक दुहबी सुहबी दीनाभद्रिक पत्नी सुधना बुधनाक अतिरिक्त हिरिया जिरिया एवं सलहेशक दौना कुसुमा के समान रूप सँ प्रेमिल व्यवहार करैत छथि। स्त्री सभक मध्य सौतिनक भाव नहि देखना जाइ छै। अपन अपन क्षेत्रक पैघ लोक सभ समाजक लेल आदर्शक क्रमे लोरिक सम्पौति राजा के आदर्श प्रतिष्ठापित कयने छथि। मिथिलाक मध्यकालीन गाथाई समाज जादू टोना डायन जोगीन साधु सन्यासी ओझागुनी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र आदिक आचार अनुष्ठान सँ आच्छादित अछि। झिझिया नैना जोगीन कामरूप कमख्या अग्निवाणीक प्रयोगक संगे ओकर प्रतिकार सेहो देखना जाइत अछि। गणिनाथ गोविंद नटुआ दयाल बहुरा गोढ़ीन आदिक गाथा एकर उदाहरण अछि, जाहिमे अंध परम्परा के समाप्त कऽ लोक कल्याणक मार्ग प्रस्तुत कयल गेल अछि। धार्मिक सद्भावक चेष्टा गाथाई मिथिला समाज अत्याचार ओ आतंक सँ प्रभावित छल। तरुवाइरक बले धर्मांतरण एवं सनातनी धर्मस्थलक विध्वंसक प्रक्रिया उत्कर्ष पर छल, मुदा सनातन धर्मक अस्तित्व के वो पूर्णतः मेटा नहीं सकल। कारिक पजियार ओ गणिनाथ गोविंदक लोकगाथा एकर उदाहरण अछि, जाहिमे मीरा सुल्तान एवं लाल खां सनातन धर्मक समक्ष नतमस्तक एवं शरणागत भेला। दैवी शक्ति ओ लोक शक्ति के बीच सामंजस्य स्थापन के रूप में ई जे दुर्गा पौराणिक देवी शक्ति एवं गहिर लोक शक्ति के संवाहिका बनल छथि, एहि दुहू शक्तिक बीच प्रतिद्वंदिता देखना जाइत अछि। प्रभुत्वक क्षेत्र में अर्थात वैदिक धर्म एवं लोक धर्मक मध्य बंशीधर बाभनक लोकगाथा एकर ज्वलंत प्रमाण थिक। बाला रामक पिता श्याम सिंह गहिल भक्त छलाह। प्रतिशोधक भावना सँ उद्वेलित बालाराम दुर्गा भक्त बंशीधर के पराजित करबाक गोहार करे

0: लैत अछि। ओम्हर गहिल देवलोक जाकऽ दुर्गा सँ सत करा लैत अछि। फलतः बंशीधरक पराजय भेल, मोहनी काटी भोंक बंशीधर मारल जाइत छथि दुर्गा व्यथित। अंतः बालाराम ओ बंशीधरक बीच गंगा में पैस मित्रता करा देल जाइत अछि। ई घटना जनसमाज में दुहु वर्गक देवी देवता के बीच सँ अस्तित्वक बोध करबैत अछि। तहिना बख्तौरक गाथा मनुष्य ओ नागक बीच सह अस्तित्वक स्थापनक उदाहरण बनल अछि। मनुष्यक जीवन ओ जगतक सृष्टिक मूल में पृथ्वी जल अग्नि वायु ओ आकाश अंतर्निहित अछि। ओ सब देवी देवताक रूप में पूजित एवं संचरित होइत रहैत अछि। लोकगाथा में प्रत्यंकित नदी देवी गंगा कोसी आ कमला बलान हुनक स्रोत धौलागिरी मैनीमठ गहबर हिमगिरी देव वृक्ष तुल्य गाछ वृक्ष अग्नि देवता उनचास पवन ओ देवलोक सदृश अंतरिक्षकक भूमिका द्रष्टव्य अछि। मैथिली लोकगाथा एहि प्राकृतिक तत्व सभक समेकित पृष्ठभूमिक रूप प्रस्तुत करैत अछि। मैथिली लोकगाथा समन्वित सामाजिक सहभागिताक एकटा सहजातीय फुलवाड़ीक निर्माण करैत अछि। मैथिली लोकगाथा मे मानव मूल्यक प्रतिपादनार्थ लोक कल्याणक भावना मुख्य स्वर में प्रस्फुटित भेल अछि। मानव मूल्यक प्रतिष्ठापन सर्वे भवन्तु सुखिनः सह अस्तित्व एवं लोक कल्याणक भावनाक प्रतिपादन भेल अछि। स्पष्ट अछि जे मैथिली लोकगाथा में मानवतावादी दृष्टिक महत्ता बढ़ि गेल अछि। जंगल आ पहाड़क प्रचंड प्रतापी राजाधिराज जयवर्धन सलहेश अपन राजधानी महिषौथाक मणिमंडपक सिंहासन आ बौर पीपलक गाछक चबूतरा पर बैस लोक कल्याणकारी काज कोखिया गोहारि गाय गोहारि बालक गोहारिक संग दलित मर्दित पीड़ित पतित शोषित ग्रसित लेल कटिबद्ध रहला अछि। अनेरे नहि हुनक तुलना रूसक हीरो आइवान द टेरिबुल आ इंग्लैंडक रॉबिन हुड आ टार्जन सँ कयल गेल अछि। अनेरे नहि दीनाभद्री जातीय लोकनायक लोक देवता थिका। ओ सतत शोषण के खिलाफ संघर्ष अन्याय के विरुद्ध लड़ाई आर्थिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के क्रम में सर्वहारा वर्गक विद्रोह का सिरमौर छला। लोरिक लोकगाथा लोक क्रांतिक प्रथम उन्मेषक एक सशक्त कलात्मक ओ प्रवहमान रचनाक चेतनायुक्त ऐतिहासिक महत्वक उदाहरण थी। एहि मध्य सामाजिक ओ राजनीतिक तथ्य रूपे तरुणी आ तरुआर सामंती सभ्यता शोषण आ दास प्रथा नारिक रूपक सुंदर अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक चेतना के संपुष्ट करैत अछि। एहिना बसावन बख्तौर लोकगाथा अंतर्गत अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न आदि के विरुद्ध लोकक नेतृत्व दलेल सिंह सँ जनपद के मुक्ति दियौनाय एकटा सामाजिक चेतना थिक, तो दोसर दिस केवल सिंह अपना नेतृत्व में जनपदीय राजा के बेगार सँ 500 के मुक्त करायब हुनक जातीय जागरणक प्रेरणा स्रोत मानल जा सकैत अछि। हुनकर गाथा में शिवरा में नागक बास दैनक जोगिनक आतंक चरवाही ठाठ मोरंगक यात्रा तंत्र मंत्रक चमत्कारक प्रयोग कतौ न कतौ सामाजिक चेतना के उन्मेष व्यक्त भेल अछि। एहि तरहें सती बिहुला लोक गाथा में नारी सशक्तिकरण प्रबल अछि। अपन सतीत्वक बले मृत पति के पुनर्जित करबाक पौराणिक कथा सदृश अछि। शिवक मानस पुत्री मनसा संयुक्त रूपे नाग शक्तिक प्रतिनिधित्व करैत छली। बिहुला के देल वचनक अनुसार शिव भक्त चन्नू सौदागर बामा हाथ सँ विषहरी के पूजा के श्री गणेश कयलनि। एहि तरह मैथिली लोकगाथा के मध्य कतौक उदाहरण भरल पुरल अछि जाहि में सामाजिक चेतना अपन प्रबल रूपे स्थान ग्रहण कयने अछि। वर्तमान में जकर प्रेरणा पाबि तथा कथित समाज एहि सँ अनुप्राणित भेल अछि।
1: मैथिली लोकगाथा में सामाजिक चेतना सुन रहल छलहुँ। ई वार्ताकार छलाह महेंद्र नारायण राम। लोककथा व लोकगाथाक उद्देश्य लोक मनोरंजन धार्मिक सामाजिक आ नैतिक कोनो भ सकैत अछि। जँ लय द्वारा भेल तऽ वह भेल लोकगाथा आ जँ स्वाभाविक रूपे शब्द में भेल तऽ लोककथा भेल। लोककथा विशुद्ध गद्य साहित्य थिक। श्रोता लोकनि आब सुनै छी किछु शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि अछार। एहि मध्य कखनो एक अछार बरखा भ जाइ छल तऽ मोन आ शरीर शीतल भ जाइ छल। अछार माने एक बेर खूब बरखा भेल फेर अनायासे बन्नो भ गेल। एकटा शब्द अछि गोलट। मिथिला में पहिने गोलट विवाह खूब होइत छल।

गोलट माने एक ही परिवारक बेटा आ बेटी के विवाह दोसर कोनो एक ही परिवार में भ गेनाई। एकटा शब्द अछि धीपल, जल्दी जल्दी एठा मेबाक छल, चाह ततेक धीपल छल जे मुँहो कनि पाकि गेल। कखनो के एहन स्थिति आबि जाइत अछि जे न छोड़ल जाय आ न ठीक से स्वादे भेटत। जाइत जाइत आप सुनै छी एक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही

0: आपको बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में

0: रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता N रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब

किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द गवर्नमेंट इज मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू एंश्योर दैट दिस सिचुएशन हैज द मिनिमल पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री। The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebrations. In a social media post after the visit to the temple, the Prime Minister said, Somnath Temple stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion.

0: natural resources, terms West Asia conflict one of decade's biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60-day stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Himanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and west Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाज़े को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है क्योंकि मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन के लिए ज़खीरा मौजूद है। मरकज़ ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। BJP लीडर हेमंत बिस्वा सरमा कल आसाम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में NDA की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। महकमा मौसमियात ने कल गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में गर्म लहर की पेशगोई की है। और क्रिकेट में भारत ने मर्दों की एक रोज़ा क्रिकेट की दर्जाबंदी में अपना अव्वल मकाम बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाज़े को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के इफ्तिताह के बाद एक इज्तिमे से खिताब कर रहे थे।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस सूरत हाल का मुल्क के अवाम पर कम से कम असर पड़े। वज़ीर आज़म ने मगरबी एशिया के बहरान के असरात से निमटने के लिए अपनी 7 नुकाती अपील को एक बार फिर दोहराया। इसमें ईंधन की खपत में कमी, जहां तक मुमकिन हो घर से काम करने को तरजीह देना, 1 साल के लिए गैर मुल्की सफर से इज्तिनाब करना और स्वदेशी मसनूआत को इख्तियार करना शामिल है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर यह भी कहा कि वो खाने के तेल की खपत में कमी करें, कुदरती काश्तकारी की जानिब पेशरफ्त करें और सोने की गैर जरूरी खरीद से गुरेज करें।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरदार धाम हॉस्टल में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सहूलत है। साथ ही मरकजी डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सहूलियात भी शामिल हैं। जनाब मोदी ने सरदार धाम इमारत में मुख्तलिफ सहूलियात का दौरा भी किया, जिसमें रिसेप्शन का एरिया और डाइनिंग एरिया, नीज ई लाइब्रेरी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर अव्वलियत का हामिल है और इसकी हैसियत अबदी है। ये मुल्क के तहजीबी हौसले और अटूट भक्ति का मुजाहरा करता है। जनाब मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मंदिर में महापूजा की और फिर कुंभ अभिषेक किया और परचम लहराया। ये तकरीबात भगवान शिव के लिए

0: न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता फराहम करने की गुंजाइश भी है। विकसित भारत जी रामजी कानून जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जो साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर की कौमी विजन को देही रोजगार पैदा करने के साथ साथ हम आहंग करता है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर कल हलफ लेने की सारी तैयारी हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए कारगुजार वजीर आला और वजीर आला नामजद हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुत्तला किया कि हलफ बरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर नितिन नवीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई मरकजी वजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजराए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब आसाम में NDA की लगातार तीसरी मुद्दत के आगाज की अलामत होगी। मगरबी बंगाल की नई रियासती हुकूमत ने आज अपना कामकाज शुरू कर दिया। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीनी इजलास की सदारत की और अमन व कानून की सूरत हाल से मुतालिक रियासती सेक्रेटरीट नबन्ना में इंतजामी मीटिंगें की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल हुकूमत के 5 वजीरों में आज मुख्तलिफ कलमदान तकसीम किए गए। इन वजरा ने 9 मई को वजीर आला सुविंदो अधिकारी के साथ हलफ लिया था। एक बड़ी पेशरफ्त के तहत आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मरकजी हुकूमत की स्कीमों के मगरबी बंगाल में निफाज को मंजूरी दे दी गई। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने आज जराए इब्लाग को बताया कि भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए सरहदी मुहाफिज दस्ते BSF को अगले 45 दिन के अंदर ज़मीनें फराहम कर दी जाएंगी। साबिका TMC हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से फंड्स मौसूल होने के बावजूद ज़रूरी खित्ते आराजी की मुंतकली नहीं की थी। नई रियासती हुकूमत ने यह भी बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाह व बहबूद की किसी भी स्कीम को मगरबी बंगाल की नई हुकूमत बंद नहीं करेगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि शेरों की कुदरती पनागाहों की बहाली, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी और बिरादरियों के जरिए उनके तहफ्फुज़ के लिए कॉरपोरेट फंडिंग ज़रूरी है। नई दिल्ली में आज CII सालाना कारोबारी चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने सनती रहनुमाओं से शेरों की नस्ल के जानवरों को बचाने की आलमी कोशिशों की सरगर्म तौर पर हिमायत करने की अपील की। जनाब यादव ने यह भी बताया कि भारत अगले महीने की 1 और 2 तारीख को नई दिल्ली में शेरों की नस्ल के जानवर के तहफ्फुज़ से मुतालिक पहली बैनुल अक्वामी चोटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज़ से मुतालिक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद का मकसद शेर, बबर शेर, चीते और बर्फानी तेंदुए समेत इस नस्ल की 7 बड़ी इकसाम का तहफ्फुज़ करना है। पंजाब के रियासती इंतखाबी कमीशन ने रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 76 म्यूनिसिपल कौंसिलों और 21 नगर पंचायतों समेत 105 मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का ऐलान किया है। ये इंतखाब 26 मई को होंगे जबकि वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इन इंतखाबात में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 13 मई को शुरू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। पर्चों की जाँच पड़ताल 18 मई को होगी जबकि 19 मई तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इंतखाबी कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इंतखाबात वाली सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, म्यूनिसिपल कौंसिलों और नगर पंचायतों की हदूद में मिसाली जाब्ता अखलाक फौरी तौर से नाफिजुल अमल हो गया है। ICC की जानिब से आज जारी की गई मर्दों की एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों की टीम दर्जाबंदी में भारत ने अपना पहला मकाम बरकरार रखा है। ताहम भारत की दर्जाबंदी में 1 पॉइंट की कमी आई है और वो 119 पॉइंट से कम होकर 118 पॉइंट रह गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 2 पॉइंट हासिल करते हुए 113वां मकाम हासिल कर लिया है। इस मामूली गिरावट के बावजूद भारतीय टीम आलमी क्रिकेट में अब भी सर फहरिस्त एक रोज़ा बैनुल अक़वामी टीम है और गुज़िश्ता हफ्ते की अपडेट के बाद मर्दों की T20 बैनुल अक़वामी दर्जाबंदी में भी अपना पहला मकाम बरकरार रखे हुए है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल गर्मी की लहर की हालात बरकरार रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4-5 दिन के दौरान मगरबी राजस्थान के इलाकों में रात के वक्त भी गर्म सूरत हाल रहेगी। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहाँ इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331-0481-2371-7117-1716 और 2331-44444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा
2: जी।
0: तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है करीब करीब जो फायर होती है 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक बस, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती हैं घरों में जो होती है, वो दो तरह से लगती हैं मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएं
0: जी।
2: तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो इस उसमें हीट जनरेट हो रही है और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू
0: हुई मई के महीने में
2: जी, आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
0: जी।
2: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है
0: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
0: जी।
3: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गाँव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
0: जी,
3: लेकिन फायर पहुँचती नहीं है तो अग्नि

0: वो किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है?
1: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
2: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहाँ पे कम्बस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है। तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
1: जी राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
3: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहाँ पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे MCED है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी राकेश जी।
4: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज़ कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज़्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज़ कर रहे हो आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीज़ों पे देना है, ना कि सबके 60 एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
4: देखिए ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद कर

0: हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बंद, तो 90 डिग्री का भी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी का भी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
3: हाँ नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रखरखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आप का लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबलाइजर्स आते हैं, एमसीबीज आते हैं, आरसीबीज आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पे लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉकड्रिल की बात करते हैं, DFS दिल्ली फायर सर्विस या कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉकड्रिल कंडक्ट करता है, तो मॉकड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉकड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर होना है।
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं सबसे बड़ी।
3: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है, तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
4: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं, आपको

0: मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी, उस
1: फैक्ट्री धर्मवीर जी सवाल हम समझ गए हैं,
0: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं प्रशांत
0: जी। लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप तीन सवाल पूछे जी।
0: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद
2: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हज़ारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15-16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
2: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा, ज़्यादा कर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोग के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिक सिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
1: जी।
2: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो है प्रिकॉशन लें, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस इंस्पेक्शन करेगी।
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
3: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार। हाँ, स्वागत है।
3: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल।
3: हाँ, सर, नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गाँव बस्तवा तहसील सीहोर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
4: नमस्कार विजय।
3: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
4: हाँ, विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है। जो लोग आसपास है

0: उनको वहां से बाहर निकलना है, पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है, उसके बाद आपको अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमिजिएटली फ़ोन कर दीजिए और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, वो फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती है, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
0: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की जैसी घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा, तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है या रेडियम मार्किंग लगते हैं या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए कोई दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
0: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज़ है उसके आस पास में जो जलने वाली चीज़ है उसको वहाँ से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है, तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी, वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
3: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार। नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर हैं, आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
4: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है।

0: सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज़। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
0: तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता है, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं। तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेड, मान लीजिए वो 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई ज़रूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
0: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी,
2: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है, पानीपत से हैं ये शैलेंद्र शेंदुड़ कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सकें? CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
2: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफ़ी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए, और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाना है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा, जितना हो सकता है आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहाँ जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं जी। प्रमोद नमस्कार, स्वागत है।
3: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी, हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
0: जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए, इसीलिए MCB, LCB, ELCB का जो कंसेप्ट है

0: इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात की, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी जी प्रशांत जी रोकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: स्वागत है आप सभी का हमारे खास फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। जी हाँ, जहाँ आपकी फरमाइश होती है हमारी आवाज और आपका फोन कॉल बनाता है कार्यक्रम को खास। आज सोमवार है, रात के 10 बज चुके हैं और हम आ गए हैं आपके पसंदीदा गीतों के साथ। तो देर किस बात की, करें कॉल हमारे नंबर 9430023535 पर और सुने अपने पसंदीदा गीत अभी से लेकर रात के 11 बजे तक। इसी बीच एक कॉलर ऑनलाइन हो चुके हैं, देखें कौन है। हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्ते नमस्कार भवेश जी, कैसे हैं आप?
0: जी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कैसे हैं, अपना नाम बताएं।
1: जी मैं मिथिलेश कामत, ग्राम भैया पट्टी, बासोपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: मिथिलेश जी,
1: आपका पुराना श्रोता।
0: जी मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं, आस पड़ोस का हाल चाल बताएं, घर परिवार का हाल चाल बताएं।
1: सर बहुत अच्छे हैं सर, और अभी शादी विवाह का लगन है
0: जी,
1: तो वहीं पर भोज खा रहा हूँ सर, आपका प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ।
0: चलिए, आपने
1: का भी लगा रहा हूँ सर।
0: आपने भोज का नाम लिया तो भोज से तो मिठाई का ज्ञान होता है, और देखिए मिठाई और गीत दोनों में ही मिठास होती है।
1: जी जी जी,
0: तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि अभी आप भोज का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे मिष्ठान खाइए। और आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: सर मैं पेशा से डॉक्टरी करता हूँ और दवा का दुकान भी है और किसान भी हूँ सर, और आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ सर।
0: जी जी,
1: और आज मेरा पसंद सर ये है, फिल्म गीत का है, फिल्म का नाम है गीत।
0: जी जी,
1: और गाने का बोल है, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, ये बता दो भवेश भाई कि तुम वही तो नहीं।
0: बहुत खूब बहुत खूब, देखिए आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाकी श्रोता भी आपके इस अंदाज से काफ़ी खुश होंगे। और बिना देर किए आपके पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।
1: नमस्ते नमस्कार, गुड नाइट सर।
0: जी कामत जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं को हम बतला दें कि आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल करें हमारे नंबर 9430029353 पर और सुने अपने पसंदीदा गीत अभी से लेकर रात के 11 बजे तक। हेलो,
1: नमस्कार, मैं तारुशन के तरफ से जितने भी सुनने वाले साथ में आप लोगों को भी नमस्कार।
0: बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं।
1: मैं ताहिर हुसैन हाबीबाग जिला दरभंगा से बात कर रहा हूँ सर।
0: ताहिर हुसैन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं
1: सर? ठीक है सर,

0: आप बताइए कैसे हैं आप लोग।
1: बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबों के साथ कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ा हूँ। ताहिर जी, सबसे पहले बातचीत तो होती रहेगी, फरमाइश बता दें कि कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे।
0: फरमाइश तो फिल्म सर लास्ट फिल्म का गाना है सर 1953-52 का है
1: जी।
0: हम तो फिल्म को हम देखते नहीं लेकिन गाना का जो हम दिमाग में सोचते रहते हैं।
1: जी जी, गाने के बोल अगर बोल देते तो बहुत सुविधा होती
0: जी। गाने की बोल आज देश तेरे संसार की हालत कितनी
1: बदल गया इंसान। बहुत खूब बहुत खूब। प्रदीप प्रदीप की आवाज में सुनना चाहते हैं
0: जी, प्रदीप की आवाज में।
1: चलिए, बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश की है। और बताएं ताहिर हुसैन साहब, हमारा प्रसारण आप तक कैसा पहुंच रहा है? आवाज
0: क्लियर
1: है?
0: बहुत हम लोग खुश रहते हैं क्योंकि वर्ल्ड न्यूज हो गया, बंद पहले तो हो गया जिला का, बंद आया सीमा का भी बंद हो गया, तब आया बीज भारती भी बंद हो गया, तब बीबीसी भी बंद हो गया। अब तो बस आपका प्रोग्राम सुनते हैं, चाइना का वर्ल्ड समाचार भी सुनते हैं।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। कार्यक्रम का आनंद आप रेडियो सेट के माध्यम से ले रहे हैं या मोबाइल ऐप से?
0: मोबाइल से ले रहे हैं, रेडियो हमारे पास है।
1: अच्छा,
0: हमारे पास रेडियो तो आपकी का रेडियो है पर रेडियो जमाना है।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और आपके पसंद का ये गीत हम आप तक भेज रहे हैं, सुने और आनंद लें जी। ताहिर हुसैन साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। आपको भी नमस्कार
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी नमस्कार। अपना नाम बताएं, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: हम कमल शाह जी बोल रहे हैं, लक्ष्मी सागर विद्यापति चौक सर।
0: जी कमल शाह जी, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं?
1: ठीक है सर, भवेश बाबू, कहने का मतलब है
0: जी
1: आपको, आप पूरे आपको परिवार टीम को
0: जी
1: रेडियो से जनता जितना भी है छोटे बड़े
0: जी
1: सभी काफी चले के आप लोग जितना भी सारा उनका नमस्कार
0: जी जी
1: सुनने वाले के नमस्कार सर।
0: चलिए, पूरे पूरे पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका भी स्वागत है, नमस्कार है। और बताएं, फरमाइश, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: नदिया के पार
0: जी, गीत के बोल अगर
1: नदिया
0: बोल
1: के
0: देते
1: पार
0: जी।
1: नदिया के पार का गाना है
0: जी,
1: दिशा में लेके चला रहे
0: बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश आपने की है। और जी
1: गाने का मतलब है
0: जी,
1: गाना पूरे बजाइएगा अच्छे से।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी
1: लक्ष्मी सागर विद्यापति चौक से बोल रहे हैं।
0: जी जी, कार्यक्रम आपके लिए है और कार्यक्रम गानों का है, तो गाना की अवधि को हम पूरा प्ले करेंगे और आप आपके मनोरंजन का पूरा ध्यान रखेंगे। जी
1: ठीक है सर, ओके, नमस्कार।
0: जी नमस्कार। कमल शाह जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रत्नुपट्टी दरभंगा बिहार से प्रशांत कुमार सतसंगी बोल रहा हूँ। भावेशी आपको और आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों और साथ ही सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार सर।
0: जी
1: आप
0: प्रशांत
1: जानते ही हैं कि
0: जी,
1: मैं आपका नियमित और बहुत ही पुराना श्रोता हूँ।
0: जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: जी, स्वस्थ हूँ, ईश्वर की असीम कृपा है।
0: चलिए बनी रहे
1: और
0: बनी रहे, यूं ही
1: जी
0: आप कार्यक्रम में कॉल लगाते रहिए, कार्यक्रम का आनंद लेते रहिए। और
1: जी
0: एक
1: सर
0: जो ये हम लोगों का प्यार मोहब्बत वाला जो संबंध है, जो रेडियो के माध्यम से जुड़ा है, ये जुड़ाव लगाव बना रहे, कायम रहे।
1: बिल्कुल सर,
0: जी
1: जब तक हम लोग स्वस्थ हैं, निरोग हैं
0: जी
1: और कार्यक्रम से लगाव बना रहेगा सर।
0: बिल्कुल, हम सब भी यही चाहते हैं। और
1: जी
0: प्रशांत कुमार सतसंगी जी, फरमाइश अपनी बता दीजिए, क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मैं गीता दत्त जी का बहुत बड़ा फैन

0: हूँ
1: जी जी,
0: तो मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में उनका ही गाया हुआ एक गीत फिल्म साहब बीवी और गुलाम का सुनवाते हैं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी सर।
1: कृपा की कोई बात नहीं है, ये हमारा काम है, और आपने गाने की फरमाइश की तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि पहले ये गाना हम लोग खोज लें और आप तक पहुंचा दें।
0: और ये गीत है आपके पास, हमारी जानकारी में गीत है आपके पास।
1: बस आपने इधर फरमाइश की और हमने गाने की तलाश शुरू कर दी है, और ये देखिए गाना हमें मिल भी गया है, और बिना देर किए आपके रेडियो पर हम पहुंचा रहे हैं। जी, प्रशांत कुमार सत्संगी जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे पसंद का गीत बजाने के लिए सर।
1: जी।

0: श्रोताओं को हम बतला दें कि आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल करें हमारे नंबर 9430029353 पर और सुने अपने पसंद के पुराने फिल्मी गाने अभी के अभी अपने रेडियो सेट पर। इसी बीच एक कॉलर ऑनलाइन हो चुके हैं, देखें कौन है। हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: ज्ञानेश कुमार किशन सर, भवन बटिया।
0: ज्ञानेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है
1: ज्ञानेश जी।
0: जी जी ज्ञानेश जी, बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं
1: सर? ठीक है, आप लोग कैसे हैं सर? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक हूँ। फरमाइश अपनी जल्दी से बता दें
1: सर। प्रेम रोग का कोई भी गाना सुना लीजिए, प्रेम रोग का।
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और कुछ अपने बारे में बताएं ज्ञानेश जी।
1: जी सर, हम नहीं सर, हम क्रिस्टियन हैं, ब्लाइंड है, दोनों आँख से रेडियो बहुत दिन से सुन रहे हैं, रेडियो ही सेट पे सुन रहे हैं।
0: अच्छा, तो ये मतलब बचपन से ही, जन्म से ही?
1: 2005 से सर हुआ है।
0: अच्छा, 2005 से किसी मतलब बीमारी के कारण ऐसा हुआ, दुर्भाग्यवश।
1: ग्लूकोमा हो गया था सर, आँख में ग्लूकोमा हो गया था।
0: अच्छा अच्छा, दुर्भाग्यवश।
1: मद्रास से इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया, उसके सक्सेस नहीं हुआ तो छोड़ दिया सर।
0: चलिए, मन से नहीं
1: जी
0: ज्ञानेश जी,
1: नहीं सर।
0: जी ज्ञानेश जी, कहना चाहूंगा कि मन से नहीं हारना है, मन की आंखों से देखना है दुनिया को।
1: जी सर, जी, जी सर, जी। और
0: बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत को बना के रखना है जी,
1: जी और सर, जी।
0: और ज्ञानेश जी, आपके पसंद जी का ये गीत आप तक पहुंचा रहा हूं, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: जी सर, आपको धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी
0: जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं
1: न्यूजीलैंड
0: जी? कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी बोला ना, मैं बबलू बोल रहा हूँ, मधुबनी रामपट्टी से। ठीक
0: अच्छा, रामपट्टी से बोल रहे हैं बबलू जी, कैसे हैं?
1: सर, आप अपना कहिए, आप कैसे?
0: बस ठीक हूँ, और आप सबों के साथ अभी कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। फरमाइश बताइए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: फरमाइश सर, पहले

0: हाँ तो ठीक है, वही जो
1: फिल्म का नाम बताइए, फिल्म का नाम,
0: फिल्म का नाम घटना है।
1: घटना फिल्म का, लता मंगेशकर की
0: जी
1: आवाज़ में सुनना चाहते हैं, यही
0: जी
1: ना
0: जी जी जी जी जी
1: जी? बबलू जी, क्या करते हैं आप, कहाँ हैं इस वक्त?
0: मैं मुंबई में टेलर का काम करता हूँ सर।
1: अच्छा, अभी आप हमारा प्रसारण मुंबई से सुन रहे हैं?
0: जी, मुंबई से बात कर रहे
1: अच्छा,
0: हैं और
1: कैसा?
0: लेडीज टेलर का काम करते हैं।
1: अच्छा, हमारा प्रसारण कैसा हो, कैसा वहाँ मतलब सुन रहे हैं, जा रहा है कैसा आवाज़?
0: अच्छा है सर, मोबाइल ऐप पे सुनते रहते हैं।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात। और आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
0: और मैं ये ज्यादातर यही मंडे को जो आता है सोनम प्रोग्राम, और फिर शुक्रवार को आता है,
1: अच्छा,
0: ये दोनों तो मिस नहीं करते हैं, दोनों बराबर सुनते हैं।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि ये दोनों कार्यक्रम आप मिस नहीं करते हैं। कार्यक्रम एक ही है, हेलो आकाशवाणी, दिन अलग-अलग है,
0: जी
1: एक आपको सोमवार को
0: जी
1: प्रसारित होता है, एक आपको शुक्रवार को प्रसारित किया जाता है।
0: जी
1: जी, कार्यक्रम एक ही है जी। और बिना देर किए बबलू जी, आपके पसंद का ये गीत
0: जी
1: आप तक हम पहुंचाते हैं।
0: ठीक है ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: सर,
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार जी। मैं रामपट्टी जिला मधुबनी बिहार से सुनते बोल रहा हूँ सर।
0: शुभ नारायण
1: सर
0: महतो
1: को
0: जी।
1: पुनः नमस्कार,
0: जी जी
1: तमाम श्रोता मित्रों को भी नमस्कार।
0: शुभ नारायण महतो जी, आपको भी नमस्कार, स्वागत है। कैसे हैं?
1: बिल्कुल अच्छे हैं सर। आप अपना सुनाइए, कहाँ हम लोगों को छोड़कर भाग गए थे सर?
0: कहीं कहीं
1: लगन
0: नहीं,
1: का टाइम का बोझ भात खाने के लिए चले गए
0: बस
1: सर।
0: बस आप लोगों के साथ हूँ और रेडियो से जुड़ा हूँ, और आप लोगों से हटकर कहाँ जाऊँगा। जी
1: नहीं, बहुत दिनों के बाद आपका आवाज सुनने को मिला रेडियो पर।
0: जी और शुभ नारायण महतो जी, फरमाइश बता दें, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: आज मुझे फिल्म गीत गाता चल वो सब का गीत सुना दीजिए। टाइटल सॉन्ग गीत गाता चल वो साथ ही
0: बिल्कुल
1: जसपाल सिंह के
0: बिल्कुल
1: स्वर में।
0: बिल्कुल। और शुभ नारायण महतो जी, बताएं आकाशवाणी दरभंगा के बारे, और कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: कार्यक्रम तो हम लोग बहुत सुनते
0: जी
1: हैं, लेकिन खास करके फरमाइशी गीत प्रोग्राम सुनता ही हूँ,
0: जी जी
1: गाम घर सुनता हूँ,
0: जी
1: और सुबह में जब होता है प्रोग्राम नमस्कार मित्र ये सब सुनता हूँ।
0: तब तो लगभग आप मुख्य मुख्य सारे कार्यक्रमों का आनंद आप लेते हैं। कैसा कैसा लगता है जब आकाशवाणी दरभंगा आप सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो बहुत सुंदर होता है, जो भी होता है बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, उसमें
0: जी
1: कमी नहीं है।
0: जी
1: हम लोग मिथिला का गौरव आकाशवाणी दरभंगा है, और उसमें मैथिली प्रोग्राम भी होता है जो बहुत गौरव की बात है। आकाशवाणी से मिथिला मैथिली का प्रोग्राम होता है तो बहुत गौरवान्वित होता हूँ मैं।
0: जी और प्रसारण हमारा कैसा पहुंच रहा है आप तक इस वक्त?
1: हमारे यहाँ तो बहुत सुंदर प्रसारण आ रहा है। हम तो बहुत नजदीक मधुबनी जिला के रामपट्टी गांव में है, तो
0: जी
1: यहाँ
0: जी
1: तो नजदीक है, बहुत सुंदर प्रसारण आ रहा है।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात बताई। और बिना देर किए आपके पसंद का ये गाना हम आप तक पहुंचाते हैं। जी शुभ नारायण महतो जी, आप
1: बहुत
0: कार्यक्रम
1: बहुत
0: में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर। नमस्कार, शुभ रात्रि।
0: जी।

0: हेलो
1: जी हेलो हेलो,
0: जी, नमस्कार। अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार
0: जी जी
1: नमस्कार। सुनो, मैं राम कुमार शाह, सिमरिया भिंडी पंचायत है, कल्याणपुर प्रखंड समस्तीपुर से बोल रहा हूँ
0: जी राम कुमार शाह जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे
1: जी।
0: हैं?
1: और इसके साथ पूरे आकाशवाणी परिवार परिवार को मेरा प्रणाम श्रीमान
0: जी
1: जी सर।
0: कैसे हैं राम कुमार शाह जी?
1: सामान्य हूँ, स्वस्थ हूँ। उम्र तो ढलता जा रहा है,
0: जी
1: 78 में 78 लास्ट करने वाला है श्रीमान,
0: सही
1: है ना। ये और है कि परिवार के साथ मिलके चल रहा हूँ। रिटायर्ड शिक्षक हूँ,
0: जी
1: इसलिए पढ़ने लिखाने से है, बगल में स्कूल है, कभी कभार बुलाहट होती हो तो चला जाता हूँ, बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूँ,
0: जी
1: यही रूटीन है
0: जी। और आप तो बुजुर्ग हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, और कहना कहना
1: जी
0: बस कहना ये चाहूँगा कि शिक्षक जो होते हैं वो हमारे समाज के निर्माता होते हैं। जी
1: जी
0: जी और
1: कभी रिटायर भी नहीं होते हैं, रिटायर तो मैं हो
0: बिल्कुल
1: गया हूँ,
0: बिल्कुल
1: लेकिन अपने मन को रिटायर नहीं किया हूँ।
0: बिल्कुल, सेवा से आप रिटायर हुए हैं, सेवा से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। मन से लोग रिटायर नहीं होते हैं। जी जी
1: मन से नहीं रिटायर
0: जी और राम कुमार शाह जी, कौन सा गीत सुनना
1: जी।
0: पसंद करेंगे, फरमाइश बता
1: बैजू
0: दें।
1: बावरा का है सर,
0: जी
1: वो आज तो सोमवार, इसलिए कुछ शास्त्रीय धुन पर मैं चाहता हूँ,
0: जी
1: वो
0: जी
1: दुनिया के रखवारे जो
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल,
1: ना
0: बिना देर
1: जी
0: किए ये
1: सर,
0: गीत हम आप तक
1: वो
0: पहुंचाएंगे।
1: जी बहुत
0: और
1: बहुत बड़ी कृपा, मैची कृपा होगी श्रीमान,
0: कृपा की कोई
1: है
0: बात
1: ना
0: नहीं है, ये हमारा फर्ज है और हमारा काम है।

0: कि जी
1: जी सर
0: बिल्कुल, और बिना बिना देर किए ये गाना आपके रेडियो सेट पर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद श्रीमान आपको भी।

श्रोताओं, फोन की घंटियां बज रही हैं, लेकिन समय की सीमा। आज के लिए बस इतना ही। जिन श्रोताओं के कॉल नहीं लग पाए, वे अगली बार प्रयास करें। याद रखें, हेलो आकाशवाणी में आपकी पसंद हमेशा सबसे पहले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। आपसे विदा लेता हूं। संयोजक असद दाऊद, प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

चार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस

0: एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।